89.6. It's hot.

अजी ये तो बिल्कुल ही असंभव है। नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी सिंपली आफरीन, राइट हियर ऑन 89.6 मिर्ची वन। और अक्सर ना हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं और ये सोचते हैं कि यार इसका ये नेचर नया मुझे समझ में नहीं आया, नहीं नहीं जमा नहीं। या फिर हमारे घर वालों का ही क्यों ना हो, हमारे रिश्तेदारों का ही क्यों ना हो, हमारे सिबलिंग्स भाई बहनों का ही, कितनी नोकझोंक होती रहती है ना। एंड हम हमेशा क्या करते हैं, हम टोकने की कोशिश करते हैं, हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो बस यार बाबू मोशा, ये एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि यार हम ना लोगों को कभी समझ नहीं सकते, ना हम उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ अगर हम बदलाव कर सकते हैं तो वो है हमारा रिस्पॉन्स टू देयर बिहेवियर। मतलब हम किस तरह से वो इंसान के एक्शन रिएक्शन को रिएक्ट करें, वो हमारे हाथ में होता है। तो बस इसी खूबसूरत से ख्याल के साथ शो की शुरुआत करते हैं। राइट हियर ऑन 89.6 आपकी सिंपली आफरीन है, आपके साथ सिंपल सी बातें, डायरेक्ट दिल से और जबरदस्त से गाने ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: जीना आराम कर दिया तुम जैसे
1: जीना बता रहा हूँ भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
1: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
2: दोनों मिलेगा, मिलेगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: और इसी के साथ आपकी देसी गर्ल भी जुड़ गई है आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक, और कह सकते हैं हमारे ये महीने का सितंबर का आखिरी हफ्ता जो है ये शुरू हो चुका है। एंड वेल विद दिस, कहीं ना कहीं मुझे आज सुबह ऐसा लगा है कि भाई बहुत ही बड़ा चेंज आया है हमारी लाइफ में, और वो क्या है?
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। वेल ऑनेस्टली वेदर आंकड़ों में नहीं, लेकिन एक्चुअली जो फील किया मैंने सुबह में, आई एक्चुअली फेल्ट लिटिल बेटर। आई मीन इट वॉज नॉट स्कॉचिंग हीट, ऑफकोर्स ये वक्त नहीं होता है स्कॉचिंग हीट का भी, वो भी मैं जानती हूँ, लेकिन हाँ ऑफकोर्स हमारे जुलाई अगस्त में काफी गर्मी लगती थी इस वक्त पर भी, लेकिन आज सच कहो आपने भी महसूस किया कि नहीं कि थोड़ा सा तापमान में बदलाव तो जरूर आया है? वेल अगर आंकड़ों की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, 31 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम। ह्यूमिडिटी ने कमाल कर दिया है जो अक्सर 70-80-60% के आसपास होती है, आज 31% पर है, और हवाएं जो है वो भी 10 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है। मतलब यार मेरा ना मीना पोर्ट पर जाने का वक्त शायद नजदीक आ ही रहा है। हालांकि दिस वीकेंड आई डिड विजिट दिस प्लेस शाम के वक्त पे, सनसेट के टाइम पर, मैंने मतलब मुझसे रहा नहीं गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आफरीन दो हफ्ते मतलब मैं रुक ही नहीं पाती कि मैं मीना पोर्ट जा पाऊं, एंड इट्स बीन मंथ्स आई हैड विजिटेड, सो मैंने तो मेरा कोटा पूरा कर लिया है। लेट्स मूव अहेड विद आवर शो। गुड मॉर्निंग के मैसेजेस काफी सारे आए हैं यहाँ पर। इमरान कहते हैं अ वेरी लाउड एंड क्लियर गुड मॉर्निंग टू द गर्ल हु नेवर रन्स आउट ऑफ मैजिकल वर्ड्स। सो इनका ये कहना है, उसके अलावा गुड मॉर्निंग आफरीन आलीशान का कहना है, और बस ऐसे ही 5000-1896 पर आप हमें गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेज सकते हैं। तब तक के लिए एक लगाना बादशाह और शाल मलिक होलगरे की आवाज में और मिर्ची साथ।

0: वेल, क्या आपका मानना है कि कतर इज एन एक्सपेंसिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म? तो फिर शायद आपका ये कहना गलत हो सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और टूरिज्म से जुड़ी हुई ये अगली खबर।
1: क्या खबर कतर?
0: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लेटेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कतर हैज रिकॉर्डेड द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट इन टूरिज्म प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबली। यस, अब प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस सुन के ये मत समझना कि कल से होटल्स और फ्लाइट सडनली चीप हो गए हैं। बेसिकली ये देखता है कि एक ट्रैवलर के लिए डेस्टिनेशन ओवरऑल कितना कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक अकोमोडेशन, ट्रैवल रिलेटेड कॉस्ट। और कतर का स्कोर इस कैटेगरी में 49% इंप्रूव हुआ है, जिसके वजह से कतर 10 प्लेसेस जंप करके 47th ग्लोबली आ गया है। ओवरऑल टूरिज्म डेवलपमेंट स्कोर भी 2024 के कंपैरिजन में 6% इंप्रूव हुआ है, द फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट इन द मिडिल ईस्ट। यस, दैट्स ट्रू। सो नेक्स्ट टाइम अगर इंडिया से कोई फ्रेंड बोले कि यार कतर तो आना है बॉस, लेकिन सुना है बहुत महंगा है, तो फिर उन्हें आप ये नंबर्स बता सकते हैं। वेल, मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
7: जबरदस्त ट्रैक्स,
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

बाबुल सुप्रियो की आवाज में व्हाट अ नॉस्टैल्जिक सॉन्ग या 90s इंडी पॉप का ये गाना, और जो सुबह सुबह सोचकर हमें ध्यान से मैसेज करके गुड मॉर्निंग कहते हैं, हाउ स्वीट ऑफ देम. हरपाल संधू जो दुकान से मैसेज कर रहे हैं, एंड रॉबर्ट डिसूजा मुंबई से जो बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी मैसेज किया है. सो वेल, विद दिस शो को आगे बढ़ाते हुए जरा मेडल काउंट पर नजर डाले. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और बात हो रही है एशियन गेम्स के बारे में, जहां पर टीम कतर का स्कोर अब काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि इस टैली में अब एक और सिल्वर ऐड हो गया है. हाइशी नगोया 2026 एशियन गेम्स में कतर की मेंस 3x3 बास्केटबॉल टीम हैज वन सिल्वर, टेकिंग कतर्स ओवरऑल टैली टू 5 मेडल्स. यानी अब 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है एंड 1 ब्रॉन्ज. क्या बात है. अच्छा, इसी के साथ एक क्विक मेडल रिकैप भी कर लेते हैं, बिकॉज कतर हैज बीन पिकिंग देम अप फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स. एक्चुअली देखिए, पहले तो कराटे में अब्दुल रहमान मुस्तफ़ा ने अंडर 60 केजीज में सिल्वर जीता था, और अब्दुल राशिद ने अंडर 84 केजी में ब्रॉन्ज जीता था. फिर आया शूटिंग रेंज से 2 गोल्ड. इनफैक्ट नासिर अलतिया, राशिद अल अदबा और अली अल शाह के टीम ने मेंस स्कीट टीम गोल्ड जीता, और फिर उसके बाद में राशिद अल अदबा ने इंडिविजुअल कैटेगरी में भी, इंडिविजुअल स्कीट में गोल्ड के साथ इनफैक्ट एक नया एशियन रिकॉर्ड भी सेट किया है ऑफ 34 टारगेट्स. एंड देन टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट एडिशन जो है बास्केटबॉल का सिल्वर, कतर ने ग्रुप स्टेज के 3 मैचेस जीते, क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया, सेमीफाइनल में ईरान को बीट किया, उसके बाद में साउथ कोरिया ने फाइनल में 1910 से जीत हासिल की. सो 5 मेडल्स ऑलरेडी, और गेम जो है ये 4th ऑफ अक्टूबर तक चलने वाले हैं. मतलब मेडल का जो ये टैली है, इसे फाइनल मत समझ लीजिए. कतर के लिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो मैं एक सरल तक आफरीन है आपके साथ, और रॉबर्ट अलमन की आवाज में लव मास्टर का ये अगला गाना ऑन मिल्शियट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Hello, Mirchi Helpline?
6: Ji, bilkul. बताइए सवाल क्या है?
5: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
6: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

0: Mirji Mornings with Mirji Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirji One. It's hot.
0: Time check.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: वेल मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:01 की तरफ और फर्स्ट क्लास हफ्ते की शुरुआत करते हुए क्वाइट लिटरली प्लेइंग अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में अग लगाना एज रिक्वेस्टेड बाय अबू अब्दुल्ला. उन्हें यार सब कुछ फर्स्ट क्लास लगता है तो सही है. Enjoy this track right here on Mirchi, it's hot.

Well, that was Rumi or Shreya Ghoshal ki awaaz mein ye gana right here on Mirchi. हाँ जी और वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. अगर देखिए आपका रूट जो है दुकान रोड की तरफ जाता है तो फिर अगले कुछ दिन घर से निकलते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हाथ में लेकर चलिएगा क्योंकि करामा हैज अनाउंस टेम्पररी ट्रैफिक क्लोजर अफेक्टिंग 3 राइट साइड लेन्स ऑन द रोड जो टूवर्ड्स दुकान रोड वेस्ट बाउंड डायरेक्शन जो है उस तरफ लीड करता है. और ये जो क्लोजर जो है ये इनफैक्ट कल से शुरू हो चुका है 26th of September सैटरडे और ये वेनसडे तक चलने वाला है 30th of September. एंड द रीजन इज वाटर लाइन मेंटेनेंस वर्क जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक के कोऑर्डिनेशन में किया जा रहा है. सो अगर आपका ये रेगुलर ऑफिस या स्कूल रन है दिस रूट इज देयर एंड टेम्पररी डाइवर्जन्स और डायरेक्शनल साइंस जो है वो फॉलो करें एंड पॉसिबल हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेकर चले क्योंकि हो सकता है थोड़ा इधर उधर सा डिले हो जावे. चलिए मैं हूँ आफरीन आपके साथ इसी तरह से कतर से जुड़ी हुई वो सारी खबर आप तक पहुंचाती रहूंगी और अच्छे वाले गाने भी पहुंचाना मेरा पूरा का पूरा फर्ज है. जैसे अमित त्रिवेदी की आवाज में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई नया गाना अमित त्रिवेदी की आवाज में. यस एंड दिस इज फ्रॉम द मूवी वाइब जो एक नई मूवी आई है कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा भी है इसमें. Enjoy this pyara sa gana on Mirchi's Hot.

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka.
0: Mirchi, burka.
2: हेलो
3: विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं, वो बंदे राजस्थान से आने थे वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
2: हेलो
3: हाँ विनीत जी, मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये? है
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर? हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों नहीं गए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप मुर्गा बन मानिए काम।
2: अच्छा भैया आप मेरे यहाँ वाले थे बजाने वाले थे?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
7: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
6: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
8: Arey wah, ice cream and cake lovers, ready ho jao! Dairy Queen laya hai dhamakedar special promotion.
6: Hanji, 26th se 30th September. Enjoy करो amazing deals Sunday सिर्फ QR 5 से, Swirls QR 9 में, Blizzards QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
8: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
9: Our business is our business, none of your business.
10: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

जानते हो सोनम कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, इन सब में एक कनेक्शन है, वो भी दोहा से जुड़ा हुआ। And well, that is the jewelry connection. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen, co-writer on Mirchi Warnings. And over the years, Bollywood का Doha Jewelry and Watches Exhibition के साथ काफी glamorous connection रहा है. Sonam Kapoor से लेकर Alia Bhatt और फिर Kareena Kapoor Khan तक, we have seen some pretty big Bollywood names associated with and attending previous editions. और दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन इज बैक फॉर इट्स 22nd एडिशन फ्रॉम 28 सितंबर टू 3rd अक्टूबर एट DECC. वेल, इस बार 49 प्लस एग्जीबिटर्स और 500 से ज्यादा ब्रांड्स अंडर वन रूफ होने वाले हैं विद ज्वेलरी एंड वॉचेस फ्रॉम कतर एंड अराउंड द वर्ल्ड, प्लस अ डेडिकेटेड कतरी डिजाइनर्स, इंडियन एंड टर्किश पैवेलियंस भी होने वाले हैं. एंड वन इंटरेस्टिंग न्यू एडिशन दिस ईयर इज क्रिस्टीज, द फेमस ऑक्शन हाउस फाउंडेड वे बैक इन 1766. Can you believe that? They'll have a dedicated space plus specialist talks around jewelry and watches. Ab Doha jewelry watch exhibition generally jo hai, it attracts 30,000 visitors from more than 175 countries. Can you believe that? So ye sirf shopping exhibition nahi hai, Doha ke major luxury calendars mein se ek event hai. Ab sawal mera ye hai that is bar Bollywood se कौन इधर आएगा? What do you think? Let me know 5001896 और whom would you love to see कि यार ये कोई है, ये अगर सेलिब्रिटी हमारे कतर आ जाए तो एक मजा ही आ जावे. चलिए, माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Yet another feel good gana Udit Narayan ki awaaz mein aur saath dete hue Alka Yagnik right here on Mirchi. Main hu Afreen aapke saath. Well, it's time कि हम हमारा गेम खेले लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. और आज का सीन बहुत ही आसान कह सकते हैं या फिर ऐसा सीन है जो मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत सारे हिंट्स दे देता है इन द डायलॉग इटसेल्फ. 90s की मूवी है और बहुत सीरियस टाइप ऑफ मूवी है. चलिए सुनते हैं.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: आम आदमी अपने खून पसीने की कमाई से जो टैक्स पे करता है ना, उसका एक हिस्सा जेल में बंद आप जैसे लोगों पे खर्च होता है. आप लोग कानून की रोटियां मुफ्त में नहीं तोड़ सकते. आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी.
3: Well said. Very well said.
0: बताइए कौन सी मूवी है ये. 5000 1896 इज माई नंबर. और जैसे मैंने कहा ना कि ये जो डायलॉग कहती है उसी में पता चल जाता है कि वॉट मूवी दिस इज ऑन वॉट स्टोरी इट इज. काफी सीरियस काइंड ऑफ मूवी थी, 90s की थी और बड़ी ही क्यूट सी एक्ट्रेस थी इसमें. 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. मीन वाइल यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ खान का ऑलरेडी मैसेज आ चुका है सही जवाब के साथ. कुंवर पांडे का भी ऑलरेडी मैसेज आ चुका है सही जवाब के साथ. और यहाँ मुझे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं. लेट मी गो एंड अटेंड दैट. मीन वाइल आप अगले आप बॉलीवुड बोल डाल सुनो और तुरंत एक गाने के बाद मैं आ रही हूँ जवाब लेकर.
4: बॉलीवुड बोल डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल.
5: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना आपने पहले मम्मी कहा ना पापा. आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है. But really, tell us how old were you when you made the song?
7: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
6: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's out.
4: Hollywood बोल डाल.
5: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold art. Only on Mirchi. It's hot.
8: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
9: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
8: This initiative is driven by GWM.
10: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
11: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
12: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
13: कम है के?
14: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
15: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Well, that is Alisha Chunay ki awaaz mein ye gaana saath dete hue Zubin Garg, writer on Mirchi, jud gayi hai aapke saath. हाँ जी, आज के सवाल जवाब के सिलसिले में एक ऐसी मूवी मैंने पूछी थी आपको, सीन सुनाया था रादर, विच इज काइंड ऑफ वेरी सीरियस मूवी, लेकिन ये काफी एपिक मूवी, क्लासिक मूवी में से मानी जाती है बिकॉज ऑफ द स्टार कास्ट एंड बिकॉज ऑफ द स्टेलर परफॉर्मेंस. कौन सी मूवी है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो यार सीन तो सुन ले.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: आम आदमी अपने खून पसीने की कमाई से जो टैक्स पे करता है ना, उसका एक हिस्सा जेल में बंद आप जैसे लोगों पे खर्च होता है. आप लोग कानून की रोटियां मुफ्त में नहीं तोड़ सकते, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी.
3: Well said. Very well said.
0: Okay, very well said, as he says. So, भाई बहुत सारे यहाँ पर जवाब आए हैं एंड प्लेजेंटली सारे के सारे सही जवाब है. यहाँ पर नो वन हैड एनी रॉन्ग गेसेस ऑल्सो. सो बहुत सारे लोगों के मैसेज है. मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, राहिल, हुमैल, सुलेमान, देन आई हैव कुंवर, देन आई हैव हुज दिस अख्तर साहब, और बस ऐसे बहुत सारे लोग हैं. लेट्स हियर द आंसर.
3: गुड मॉर्निंग.
0: वेरी गुड मॉर्निंग
3: जी. गुड मॉर्निंग आफरीन.
0: हाँ जी,
3: संघर्ष मूवी है, प्रीति जिंटा, अक्षय कुमार.
0: बिल्कुल सही
3: ओसामा, जबरदस्त मूवी है
0: एक्चुअली.
3: मतलब उस टाइम पर इस मूवी देखने के लिए बहुत मतलब पेशेंट चाहिए था इस मूवी देखने के लिए आपको.
0: मेरे ख्याल से पेशेंस के साथ साथ जिगरा भी चाहिए था. एंड वी हैव वन मोर लिसनर.
4: हाँ जी. डायरेक्टेड बाय तनुजा चंद्रा, प्रोड्यूस्ड अंडर द बैनर ऑफ.
0: That is absolutely right, Akhtar Sahab. It is indeed Sangharsh. And yes, जैसे मैं कह रही थी कि यार मुझे बहुत ही डर लगा था जब मैंने ये मूवी के क्लिप्स देखे थे. मैं आई कुडंट वॉच द एंटायर मूवी. हालांकि अब जो है वायलेंस का जो स्तर है वो कई कई ज्यादा हो गया है, बट हमारे टाइम में 90s में इतना नहीं हुआ करता था ना. एंड आशुतोष राणा की एक्टिंग वॉज लाइक गूज बम्स. वो लास्ट का सीन मैं भूल नहीं सकती यार. क्या आपको भी याद आ रहा है वो? दैट वॉज स्कैरी. Let's leave that and let's hear some sweet si awaaz mein, yani Sonu Nigam ki awaaz mein, is movie ka gaana, one of my favorites. Yeah,
5: mujhe raat.
0: Enjoy this beautiful track, Mike se dil tak Mirchi. It's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6 Mirchi 1.
0: It's hot.
3: Well, Mirchi Mornings पर आफरीन तो जुड़ गई है. जबरदस्त गाने, जबरदस्त बातें, काम की बातें, कतर से जुड़ी हुई बातें, सब कुछ चलेगा यहाँ पर राइट हियर. लेकिन उससे पहले मिर्ची खड़ी का इशारा देख लेते हैं. हो रहा है एग्जैक्टली सुबह के 8:01 की तरफ. और अगला गाना कॉकटेल 2 से महमूद, राघव चैतन्य और रुआ के की आवाज में ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: वेल माय फ्रेंड्स, जिंदगी के फाइनेंशियल डिसीजंस इस पर भी डिपेंड करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और अगर आप उन में से हो जहां इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में मानते हो, देन दिस अपडेट इज डेफिनेटली फॉर यू।
1: गोल्ड अपडेट।
0: देखिए, गोल्ड का रेट आज जो है वो ये कहता है, पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 576 कतरी रियाल, वेर एज 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2699 कतरी रियाल, 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5329 कतरी रियाल, 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16470, वेर एज 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 61151 कतरी रियाल। ये थे आज के गोल्ड रेट। सोना लेना हो या ना लेना हो, लेकिन भाव पे नजर हमेशा रहनी चाहिए। फिलहाल तो अगले गाने पे नजर रखते हुए मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.
4: Tu baat kare ya na mujhse.

0: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
1: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है. डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करेगा.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये
1: तो
2: जाना सनम.
1: आपका इस टाइप मुझे पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप.
1: ठीक है, मैं क्या करूँ बताइए ना.
2: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
1: है. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार होगा
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे जे.
1: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब कुकड़ू को.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
4: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है.
5: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है.
4: हाफ पे बैक मतलब?
5: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली.
4: वाओ, किस किस चीज पे?
5: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज.
4: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
5: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो. तो देर किस बात की? हेड टू लूलू. हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा. लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
6: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ. डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन.
7: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स. संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से.
6: तो देर किस बात की? अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ. डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड. तो देर किस बात की? सब कुछ आधे प्राइस में.
8: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
9: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
8: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
10: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
8: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
11: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
12: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

परंपरा टंडन की आवाज में ये खूबसूरत गाना राइटर और मिर्ची आपके साथ जुड़ी है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक एंड हियर वी हैव न्यू एक्सचेंज रेट्स। आज का एक्सचेंज रेट कहता है कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.26। यस यू हर्ड इट राइट। वेयर एज पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.13। बांग्लादेशी टाका पे अगर नजर डाले इट सेज इट इज एट 33.76 एंड एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज दैट इज अराउंड 90.64। वही नेपाली रुपीज माई फ्रेंड्स इज एट 42 नेपाली रुपीज। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे ढेर सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6 मिर्ची 1 पर माइक से दिल तक आफ्टरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Well, दोस्तों देखो सेम अप्लाइज टू मी एज वेल. Rather, I should say that the same applies to you. कि अगर आप मुझे छोड़कर जाओगे ना यहाँ पर कहीं चैनल चेंज करोगे तो बड़ा पछताओगे, क्योंकि यहाँ पर आफरीन अब आपके लिए गेम लेकर आई है. Yes, very good morning and welcome back. Simply आफरीन का साथ है right here on Mirchi Mornings and game ऐसा लेकर आई हो जो आप तो जानते ही हो हमेशा कुछ अलग करते हैं हम इस वक्त पर. Mirchi Mystery Box.

0: यस, कुछ अलग से मतलब हमेशा कुछ नया आपको यहाँ पर सवाल पूछती हूँ, कुछ अलग अंदाज में पूछती हूँ। और आज का सवाल भी कुछ ऐसी ही है, एक आवाज सुना रही हूँ मैं आपको, ठीक है? आपने गेस करना है आखिर ये आवाज है किसकी। सो इजी, ओके, सो हियर इट गोज। भाई छोटा सा हिंट दो क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, पहले मैं आपको ये आवाज ही सुना देती हूँ। इट्स अ वॉइस ऑफ अ सेलिब्रिटी। एक इंटरव्यू में आपको गेस करनी है ये सेलिब्रिटी की आवाज, ठीक है?
1: एक तो टेक्निकल इशू ये है कि हमारे गाने हमारे नहीं हैं,
2: राइट?
1: एज सिंगर्स वी हैव जस्ट संग द सॉन्ग, बट द सॉन्ग बिलोंग्स टू द कंपोजर, द लिरिसिस्ट, एंड एक्चुअली इट डजंट इवन बिलोंग टू देम,
2: द लेबल।
1: It belongs to the label, so you know you can't really do this unless the label wants you to do it. You know they'll put it down, right? वो आप नहीं कर सकते, एक वो। बाकी किसी सिंगर को कहना कि जब आप कोई गाना गाते हो तो उसमें आप मेलोडी लाते हो, वो भी गलत बात है। आप हमें डेडिट कर रहे हो कि हम जब गाते तो गाना लगे।
0: ओके, बहुत बातें की है इन्होंने। कौन है लेकिन ये सिंगर? मैंने एक छोटा सा हिंट तो ऑलरेडी दे दिया यहाँ पर। 5000196 इज द नंबर। ये जो आवाज थी ये एक सिंगर की थी, लेकिन ये कौन से सिंगर की आवाज है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर बता दिया मैंने आपको, 5000196। मीनवाइल अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है अमर जलाल, आईपी सिंह, योहानी, हरजोत कौर की आवाज में, और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
2: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
7: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन.
10: इट्स हॉट.

0: Well, that was Shilpa Rao और Kalesa Montero की आवाज में ये गाना Right Here on Mirchi जुड़ गई है आपके साथ. Very good morning and welcome back. Yes, simply Afreen right here on Mirchi Mornings. Or it's the time to disco, nahi, it's the time to Mirchi Mystery Box. Mirchi Mystery Box. Yes, और आज एक ऐसी आवाज सुनाई थी मैंने जो आपको टोटली कंफ्यूज करके रख दी थी. इनफैक्ट मैंने तो हिंट भी दिया था यहाँ पर कि ये जो है हमारे एक सिंगर की आवाज है. कौन है चलिए फिर से सुनते हैं और कोशिश करिए पहचानने की. यार 90s के हमारे सिंगर है.
1: एक तो टेक्निकल इशू ये है कि हमारे गाने हमारे नहीं है.
2: राइट,
1: एज सिंगर्स वी हैव जस्ट संग द सॉन्ग बट द सॉन्ग बिलोंग्स टू द कंपोजर द लिरिसिस्ट एंड एक्चुअली इट डजंट इवन बिलोंग टू देम
2: द लेबल.
1: It belongs to the label, so you know you can't really do this unless the label wants you to do it. You know they'll put it down, right? वो आप नहीं कर सकते. एक वो बाकी
0: किसी सिंगर को. Okay, कौन है ये, किसकी आवाज है? Let's hear your answers.
3: Good morning, Aprin.
0: Good morning.
3: The singer is KK.
0: Okay. All right, I've got so many answers here, but not the right answer. यहाँ पर किसी ने कहा है अभिजीत सावंत, तो किसी ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट के भी कहा है और विशाल मिश्रा भी कहा है, but no, my friends, this is none of them. 5001 96 is my WhatsApp number. अगर अभी भी आप जवाब देना चाहते हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वॉइस मैसेज नहीं रॉबर्ट डिसोजा जी, बिकॉज आई कैन नॉट रीड योर मैसेज और हियर योर मैसेज राइट नाउ. लेकिन ये वो सिंगर हैं जब ही गाते हैं ना तो मुझे इनकी हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सहन में आता है एंड दैट्स हाउ ही सिंग्स एज वेल. एंड विद दिस आई हैव गॉट द राइट आंसर. जैमिन का यहां पर मैसेज आया है सेइंग दैट आफरीन ये तो शान है एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट. प्रवीण आल्सो सेज दैट दिस इज शान एंड देन आई हैव सम मोर 080 एंडिंग सेइंग दैट इट इज शान एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. और जहां आपने शान को कैसे इतने टाइम से पहचाना यार, राइट right? चलिए शान का वो गाना सुनाती हूँ जो हमने इनिशियल डेज में सुना था 90s इंडी पॉप लवोलॉजी. शान की आवाज में ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं।
2: oh, no.
0: फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi One. It's hot.
2: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 9:01 की तरफ एग्जैक्टली एंड संजू राठौर ब्रिंगिंग दैट स्माइल ऑन योर फेस विद योर नेक्स्ट ट्रैक ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

Well, स्लो मोशन गाने का नाम है लेकिन एंड तो बिल्कुल फास्ट मोशन में होता हुआ नकाश अजीज और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना राइट इन मिर्ची. Very good morning and welcome back. It's a new day, it's a new week. और ऐसे ही आज जब मैं घर से निकली तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ देखो changes तो जरूर आए हैं. नया हफ्ता अपने आप में अलग अलग चीजें लेकर आया है. Well, events की बात करेंगे वो बाद में, लेकिन let's talk about मौसम. क्योंकि यार कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अगले कुछ दिन जो है वो ह्यूमिडिटी तो रहेगी लेकिन जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी शायद कम हो सकती है. और ये जो होता है ना, ये अक्सर सुबह के वक्त होता है. अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर अगर आप ऑफिस के लिए कहीं निकलते हो, स्कूल ड्रॉप अप पिकअप्स वगैरह के लिए निकलते हो, देन एट दैट टाइम हो सकता है कि विजिबिलिटी इज ओनली अप टिल 2 किलोमीटर्स और इवन लेस. सो ड्राइविंग जो है वो बिल्कुल सेफली करिएगा. एंड सच मुझे बताइए कि आपको महसूस हुआ कि मौसम थोड़ा चेंज हुआ है. इवनिंग वॉक्स जो है वो तो शुरू हो सकते हैं अब, बहाने नहीं. बिकॉज यू नो व्हाट, मैंने भी कल ट्राई किया इवनिंग वॉक करने के लिए एंड आई कुड डू इट वेरी कंफर्टेबली विदाउट दोज पसीनाज. मतलब हाँ, वो ह्यूमिडिटी वाला चिपचिपा पसीना है नहीं, वो जो मेहनत वाला होता है एक्सरसाइज और वॉक के बाद वाला, दैट इज ठीक. तो आपका अभी बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा, स्पेशली जब बात एक्सरसाइज और वॉक्स की आती है. तो आप तो आपको शाम को बाहर निकलना ही है. मैं हूं आफरीन, माइक से दिल तक आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची. एबी डिलॉन की आवाज में ये अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है. इट्स हॉट.

0: Energy. Escapa la buscaba la sacaba la bala. Burga, burga. La virtual la burga. Energy, burga.
1: Hello.
2: Hi. You से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,983।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: तो वही मैं सुधरा था, मतलब।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339,000। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
6: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
5: हाफ पे बैक मतलब?
6: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
5: वाओ, किस किस चीज पे?
6: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
5: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
6: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
7: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alpha Dhan Exchange.
8: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alpha Dhan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
9: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ। डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
10: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
9: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
11: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
12: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये गाना मुझे ऋतिक रोशन, वो न्यू वाला डेब्यू वाला ऋतिक रोशन की याद दिला दिया, बिकॉज व्हाट अमेजिंग डांसर ही वाज। आई एक्चुअली फेल्ट क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि बॉलीवुड में ऋतिक से पहले इतना फिनोमिनल डांसर कोई था नहीं। सो ऐसा डांस करते हुए हमने तो यार एज ए किड पहली बार ही देखा था ना, है ना। और जहाँ बचपन की बात छिड़ ही गई है और हमारा वीकेंड भी आया है ना, मुझे एक चीज सडनली ऐसी याद आई कि यार अपना वीकेंड जो था बचपन में कितना लंबा लगता था ना। सुबह उठे, हमने कार्टून नेटवर्क देख लिया, कार्टून्स देख लिए अपने पहले अपने फेवरेट वाले, देन उसके बाद में स्पेशल वीकेंड वाला सैटरडे संडे को मम्मी का कुछ ऐसे अलग आइटम रहता था या हमारा फेवरेट वाला आइटम बनता था, वो खा लेते थे। दोपहर का वक्त भी होता था हमारे फ्रेंड्स के साथ में खेलना, कुछ नए से नए गेम्स कुछ करना, एंड देन स्टिल वी हैड सो मच टाइम एंड वी ऑल्सो फेल्ट अरे अभी तक तो संडे बाकी है, और फिर होमवर्क भी कर लेते थे, खेल भी लेते, सो मैनी थिंग्स वी यूज टू डू एंड वीकेंड समहाउ फेल्ट लॉन्गर। बट कट टू टुडे, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, अब ऐसा लगता है कि फ्राइडे मॉर्निंग शुरू हो जाती है एंड यू ब्लिंक इट एंड यू आर ऑलरेडी इन सैटरडे इवनिंग, अनफॉर्चुनेटली। अब जानते हो क्यों? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, वो जो ये कहता है कि जब आप का जो दिमाग है ना, आप कुछ एक्सपीरियंसेस करते हो, आप कोई मेमोरीज क्रिएट करते हो ना, तो आपके दिमाग को वो याद रहता है और आपको ऐसा लगता है कि यार वो कितना अच्छा समय था और कितना लंबा समय था, है ना। एंड देन अगर आप रूटीन ही करते रह जाते हो ना, देन इट डज नॉट रियली मैटर मच और वक्त कहाँ चला जाता है, कैसे चला जाता है, इट्स ऑलवेज लाइक कि यार फर्क ही नहीं पड़ता है। सो अगर आप कुछ एक नई एक्टिविटी, अब भले ही वो अपने फैमिली के साथ में एक बोर्ड गेम ही खेलना क्यों ना हो, बट कुछ ऐसा अलग करे वीकेंड पर जो आप अमूमन नहीं करते हो, देन आई थिंक सो द वीकेंड बिकम्स मोर मेमोरेबल टू यू एंड इट ऑल्सो फील्स लिटिल लॉन्गर। ट्राई करके देखो अगली बार, अगले वीकेंड पर, ठीक है ना। मीनवाइल मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट इन रणमिर्ची, जहाँ वीकेंड और बचपन की बात की है। बताओ ना मुझे 5000196 व्हाट्सएप पर कि आपके बचपन से जुड़ी हुई छुट्टियों में करने वाली एक एक्टिविटी कौन सी थी जो आपको अभी याद आई है मेरे बातों से। चलिए कुमार सानू की आवाज में ही अगला गाना 90s का फिर से सुनते हुए। लेट मी टेल यू यार, सलमान खान नेवर लुक्ड सो हैंडसम Apart from this song. मतलब हाँ लगे हैं अगले गाने दूसरे गानों में भी, but I think so this is by far the best song of Salman Khan where he's looking stunning. Enjoy this track on Mirchi Mike, Sadil Takafreen ke saath, it's hot.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: किड्स आर बैक टू स्कूल, बिजी शेड्यूल्स, होमवर्क, क्लासेस, टेस्ट, फ्यू, so much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge driven by GWM is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises, because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: मिल्केश चित्रा और शान की आवाज में एक ऐसा गाना फ्रॉम अ मूवी, तो शायद हमें याद तो सभी को है. For overacting, but I think so. This is by far the most underrated and beautiful song of this movie. मैं प्रेम की दीवानी का ये गाना और मिर्ची, it's hot.

मिल्केस चित्रा और शान की आवाज में एक ऐसा गाना फ्रॉम अ मूवी, तो शायद हमें याद तो सभी को है फॉर ओवर एक्टिंग, बट आई थिंक सो दिस इज बाय फार द मोस्ट अंडररेटेड एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ दिस मूवी। मैं प्रेम की दीवानी का ये गाना और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वेल केएस चित्रा और शान की आवाज में ये गाने में है टोटली स्टार्टेड इमेजिनिंग, गिटार के साथ में करीना कपूर सिंगिंग द सॉन्ग इन अ टोटली ओवर एक्टिंग मैनर, मतलब कुछ अलग ही अंदाज था। और वो साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे ऋतिक रोशन उन्हें माइक लेकर, यू डांस करते हुए एक अजीब किस्म की एक्टिंग। लेकिन ये पूरे गाने में समवन हु केप्ट द काम कंपोजर जस्ट ट्रू टू द कैरेक्टर वॉज अभिषेक बच्चन पियानो पर। आई कुड जस्ट इमेजिन द एंटायर सॉन्ग। क्या आपने भी किया मेरे साथ में ये गाना इमेजिन? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और बताओ मुझे, ओवर थिंकिंग के शिकार आप भी हो क्या? देखो मैं तो हूँ यार, एंड आई एम श्योर लेडीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ये ओवर एक्टिंग या ओवर थिंकिंग का ये जो फिनोमेना है। लेकिन कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हम सब इसके शिकार रह चुके हैं। और बस इसी बात पर आज की आफ्रीन की शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है कि हर बात का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं, हर राज का खुलना आज जरूरी नहीं, हर बात का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं, हर राज का खुलना आज जरूरी नहीं, कुछ चीजें वक्त पर छोड़ दिया करो, कुछ चीजें वक्त पर छोड़ दिया करो, क्योंकि हर मोड़ पर खुद को समझना जरूरी नहीं। सोचते हैं ना हम और बहुत ज़्यादा डिकोड करने की कोशिश करते हैं खुद को, सिचुएशंस को, लेकिन कभी कभार तवक्कुल। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

देखो क्वाइट लिटरली देखा जाए तो जीते जीते तुसी जा रहे हो, पीछे पीछे मैं तो आ ही रही हूँ, मतलब आपके राइड की साथी यहाँ पर बनी हुई हूँ। और मैं यानी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरनून का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट इज 27th ऑफ सितंबर और इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक, लेकिन देखते ही देखते ये नए हफ्ते का पहला दिन मेरे लिए तो कितनी जल्दी खत्म हो गया है एंड आई फील सो गुड अबाउट इट। वेल हैविंग सेड दैट, यहाँ पर मिर्ची लेकर आया है एक नया इनिशिएटिव, दैट इज कॉल्ड मिर्ची रिचार्ज, जहाँ बच्चों के साथ में बहुत मस्ती करने वाले हैं। क्या है ये एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये तो आपको कल पता चलेगा, और वो भी कैसे पता है, आपको ना मिर्ची वन कतर की स्टोरीज जाकर देखना चाहिए, क्योंकि वो एक स्कूल होने वाला है जहां मिर्ची की टीम जाने वाली है और फुल धमाल चौकड़ी करने वाली है। वो कौन सी स्कूल है वो तो कल आपको पता ही चल जाएगा हमारी स्टोरीज में। सो यू हैव टू गो एंड फॉलो इंस्टाग्राम पर मिर्ची वन कतर को, जहां सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं मिर्ची टीम आए आपके बच्चे के स्कूल में, सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी, यानी कॉन्टैक्ट 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर। और अगर चाहते कि यार आफरीन सही में बच्चों को जरूरत है कि थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन हो, स्पेशली क्योंकि एग्जाम्स अब चल रहे हैं कहीं पर और एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, कहीं ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, सो ये एग्जाम्स के स्ट्रेस के बाद ना थोड़ा सा मिर्ची डोज तो मनता है ना। सो इफ यू वॉन्ट द मिर्ची टीम टू विजिट योर स्कूल, योर किड स्कूल, यू हैव टू मैसेज अस, 5000196 इज आवर व्हाट्सएप नंबर। मीनवाइल टाटा बाय बाय सायोनारा कहती हुई आफरीन लेना चाहेगी इजाजत, इजाजत है बने रहेगा हमारे साथ ऑन मिर्ची के साथ।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: एलकेके एंड डोमिनिक की आवाज़ एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक इट इज़। सच कह रही हूँ, मतलब हाय, किसी को अगर दिल में दर्द है ना, तो वो हार्ट का पेशेंट बनने में ना, इस गाने के बाद इश्क प्यार मोहब्बत अगर हो जाए तो उसमें वक्त नहीं लगना है। जोक्स अपार्ट, हम दिल दे चुके फिल्म का नाम, यू नो, सलमान खान की वो आँखें, वो उनका पेन, ऐश्वर्या राय की वो खूबसूरती, क्या प्यारा पिक्चराइजेशन एंड क्या ही खूबसूरत सा गाना। चलिए, ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन साथ ये भी बता दूं, जहाँ पर भी जा रहे हैं वक्त का जरा ख्याल करें, क्योंकि मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:05।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यार बात इतनी है कि जितना मैं घूम रही हूँ ना, उतना जिंदगी मुझे कुछ ना कुछ सिखा रही है।
2: मिर्ची अंशु।
0: Hey, very good morning. Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Archer with you. आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड कोई नई जगह की नई दास्तां आप तक मैं पहुँचाने भी वाली हूँ। तो अगर मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो ये बात आप जानते हैं कि मैं गायब थी। अभी इन दिनों थोड़ा ज़्यादा गायब होने लगी हूँ। सितंबर वॉज एक्सट्रीमली बिजी फॉर मी, इन फैक्ट स्टिल इट इज़। लेकिन अब की बार अगर मैं कहीं पहुँची थी तो उस जगह का नाम है कोलंबो, यानी कि श्रीलंका। एक बार फिर से इस महीने में गई एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू होस्ट very nice event that was basically for the CIOs, the global CIOs. There were nearly CIOs from 60 countries, but more so this event was graced by the Honorable Prime Minister of Sri Lanka. So, unse kuch baat karne ka mauka mila, unhe jaane ka mauka mila, and it was such a beautiful, lovely experience. But yaar, ek baat maine samjhi hai ki jab bhi koi bhi shakhs itne unche mukam par pahunchta hai na, to yahan par pahunchne ke baad, jahan pe ek taraf unka knowledge, unka skill, unka talent, unka caliber bolta hai, wahin dusri taraf sabse ज़्यादा अगर हमारे दिल को अगर कोई बात छूती है तो कि शख्स अगर है तो वो कितना हम्बल है। ह्यूमिलिटी जो है ना यार, लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। एंड ये बात जो है, जब बहुत सारे श्रीलंका के पार्लियामेंट ऑफिसर्स से मिली तो ये बात महसूस हुई कि भाई सबके सब अपने अपने मुकाम में कितनी अच्छी तरह से पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस अदब के साथ, जिस कायदे के साथ एंड जिस ह्यूमिलिटी के साथ उन्हें हमें वेलकम किया, हमसे मिले, ये बात जो है ना यार, दिल को पूरी तरह से छू गई। तो यार इतना कहना चाहूँगी कि माना हमें से कई लोग अपने अपने करियर्स में बहुत आगे निकल सकते हैं, प्रोफेशनली हम बहुत बड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियली हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इंसान का बड़प्पन अगर सबसे ज़्यादा किसी बात में बोलता है तो ये दिखता है, तो वो ये कि चाहे वो ज़िंदगी के कितने भी ऊंचे मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, उसके बाद भी ह्यूमिलिटी या ग्राउंडेड रहना, उसके अंदर ये फीचर कितनी खूबसूरत तरह से मौजूद है। तो बस श्रीलंका की ये बात जो है मेरे दिल को ज़रूर छू गई। अच्छा आप मुझे बताएं, क्या आपको मेरी बात सही लगी? मतलब आपको लग रहा है हाँ यार, जो तुम बोल रहे हो बात बिल्कुल सही है जी। 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम। मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु मीन वाले काम करते हैं मधुबंती बाक्षी की आवाज़ में। आपको ये अगला पावर पैक गाना सुनाते हैं, ट्रैक एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
4: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
4: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने हैं बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
4: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
4: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
4: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
4: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
4: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़े जाऊंगा यार।
4: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
3: हेलो हेलो,
4: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
4: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
5: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया आप मेरे जाने वाले थे, बजाने वाले थे।
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: खट खट
8: पूरे
7: बनता
8: बनता हूँ,
7: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
8: खट खट हू दैट,
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: शाह की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ यार, क्या खूबसूरत सा प्यारा सा गाना। चलिए, गाना तो आज मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड खास बात भी अब आप तक पहुंचा दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, सच कह रही हूँ, मतलब जब किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार हो ना, तो हम एक लंबा सफ़र, लंबा वक्त जो है फिर भी तय कर ले, लेकिन जो आखिरी के चंद दिन होते हैं ना, उन्हें निकाल पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल और बड़ा ही बर्दाश्त के बाहर होता है ना। उस वक्त मेरा स्टेज जो है ना वो बस यही है। देखिए, अगर सारा का सारा सिनारियो जैसे बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जिसकी मैं बात करूँ ना, वो है हमारा ये वेदर। वेल, फाइनली जब ये पता है कि ऑफिशियली गर्मी का मौसम कतर को अलविदा कह चुका है, अब हमने दिल खोल कर अगर किसी को वेलकम किया तो वो है ऑटम सीजन। तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई हो गया, ऑफिशियली जा चुकी हो तो अपना बोरिया बिस्तर सब कुछ लेके जाओ ना, अपने कुछ कपड़े जो है तुम घर पे क्यों छोड़ के जा रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। देखिए, इतना समझ रहे हैं, अगले एक महीने इस वक्त अगर आपको कतर में कुछ कूट कूट के महसूस होने वाली है तो वो है उमस, यानी कि ह्यूमिडिटी। सो आई वुड लाइक टू से स्टिल इट इज़ अ लिल हॉट, लिल मतलब बहुत ज़्यादा वाला हॉट, एंड साथ ही ह्यूमिडिटी जो है, उमस जो है भरपूर है। तो ऐसे सिचुएशन में अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीप योरसेल्फ फुल्ली हाइड्रेटेड, खूब ज़्यादा पानी पीते रहें एंड खुद को पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर रखें। देखो, कलेजे के ठंडक के लिए तुम्हारे मैं तो हूँ, लेकिन स्किन को अपनी स्क्रीन रखने के लिए ना सनस्क्रीन जो है तुम्हारा पक्का वाला बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। नहीं, घर के थोड़े आदमियों से बचा के रखो। ऐसे लगाते हैं हमारे 250 रियाल के सनस्क्रीन को जैसे कोई 50 रुपये का साबुन। एक्सपीरियंस किया होगा आपने भी। रोमी एंड श्रेया घोषाल की खूबसूरत सी आवाज़ और अगला प्यारा सा गाना आप तक। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
2: बंद

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट
6: हू दैट?
5: अकबर।
6: अकबर हू?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट हू दैट?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

अरमान मलिक की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़, क्या खूबसूरत सा गाना। एंड जहाँ पे इस तरफ मैंने आपको इनका एक गाना सुनाया, वहीं दूसरी तरफ आपको अरमान मलिक से जुड़ी हुई एक बहुत खास और स्पेशल सी बात बताती हूँ। यार सच कहूँ, जिंदगी में ना कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हो जाते हैं। कुछ लोगों से आप मिलते हैं, उनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद लाइफ लॉन्ग आप भुला ही नहीं पाते। तो अरमान मलिक से जुड़ी हुई एक ऐसी ही बात है। अरमान मलिक अपना एक शो करने आए थे अब से कुछ साल पहले कतर में, अगर आपको याद होगा तो। यू नो इट वॉज अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट एंड बहुत ही प्यारा सा शो था, बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट था। इनके जो गाने थे उस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग होने लगे थे, नए नए इंडस्ट्री में एंट्री बस इन्होंने मारी थी, लेकिन उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा बोलबाला इनका हुआ था कि भाई ऐसा लगने लगा था कि मलिक खानदान का ये जो अगला नवाब है, ये सर्टनली अपने चाचा की तरह, अपने पापा की तरह अलग कमाल करने वाला है। एंड बस ये काम जो है अरमान ने करना शुरू कर ही दिया था। लेकिन पता है इस बंदे की सबसे खास एंड सबसे खूबसूरत बात क्या थी? जिस तरह से ये अपनी पूरी की पूरी टीम को हैंडल कर रहा था। सो आई वाज़ द एमसी फॉर दिस इवेंट, मैंने इस इवेंट को होस्ट किया था। ना ही सिर्फ अरमान मेड श्योर कि इवेंट के पहले ये खुद मुझसे मिले, मेरा नाम सही तरह से मुझसे पूछें, इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ये समझें। एंड इन फैक्ट ही टुक द एफर्ट कि जब मैंने इन्हें स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले मुझे थैंक यू कहा। एंड आई वाज़ लाइक अ सिंगर ऑफ दैट स्टैचर, ऑफ दैट कैलिबर, ऑलरेडी व्हेन ही हैज़ गॉट हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स रनिंग यू नो इन हिज माइंड, परफॉर्मेंस को लेकर, सारी बातों को लेकर, लेकिन इसे इतना ख्याल है कि मुझे जाने से पहले जो शख्स ने मुझे इतनी अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया है, मुझे उसे सबसे पहले थैंक यू बोलना है। ना ये बात शायद किसी और को छोटी लगे, लेकिन ज़िंदगी में ना ये बहुत मायने रखती है। हम ना कई बार चीज़ों को, लोगों को बहुत ग्रांटेड लेने लगते हैं। यार ठीक है यार, यार मैं तो ना बड़ा हूँ, मैं तो ये हूँ, ठीक है कर दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। भाई साहब, आप बड़े अपने टैलेंट से, हुनर से, स्किल से नहीं बनते, ज़िंदगी की ऐसे छोटी बातों, छोटी वैल्यूज से आप बनते हैं, तो सही मायने में आपको एक ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाता है। तो बस छोटी छोटी बातें ज़िंदगी के डे टू डे लाइफ में अगर हम ख्याल रखना शुरू करें ना, तो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिकली हमारा दिल बड़ा होगा और औरों के दिलों में हमारी जगह जो है वो और भी ज़्यादा बड़ी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: द लेट इरफान खान से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है, इज इट दिल्ली, इज इट मुंबई?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फीचरिंग ऋतिक रोशन एंड कियारा आडवाणी फ्रॉम द फिल्म वॉर 2. चलिए, गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन आने जाने के सिलसिले की बात करूँ तो बस एक बार फिर से ये शुरू होने ही वाला है.
1: मिर्ची अंशु.
0: वेल, फाइनली जब ये बात आपको और हमको बहुत अच्छी तरह से पता हो कि समर्स ने कदर को अलविदा कह दिया है एंड साथ ही ऑटम के अलावा विंटर्स बहुत जल्द दस्तक देने वाला है, तो ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कतर में अगर कोई सिलसिला शुरू होगा सो दैट इज गोइंग टू बी ऑफ आना एंड जाना. जब एक बार फिर से ढेर सारे इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस कतर में होते हुए नजर आएंगे, उसके अलावा बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स जो लाइनअप हैं उनका बोलबाला रहेगा. एंटरटेनमेंट का खजाना हम सब के लिए कुछ इस तरह से खुलेगा कि ना ही सिर्फ आप और हम अपने घर से आने जाने का सिलसिला कायम रखेंगे बल्कि देश दुनिया से बहुत सारे लोग एक बार फिर से आने जाने वाले हैं. बढ़िया जी, लेकिन क्या कुछ खास है जहां इस वक्त आप कतर में देख पाएंगे? बोल, जहां पे एक तरफ मैं ग्रैंड प्री की बात करूं, मोटर बाइक्स की दुनिया के गजब से कारनामे की बात करूं, या तो फिर मैं बात करूं कुछ ऐसे इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस की जिन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा, AI के अलावा, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, ये सब कुछ आपको आने वाले दिनों में कतर में देखने को मिलने वाला है. एंड बहुत सारे एंटरटेनिंग एक्टिविटीज हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, म्यूजिक का सैलाब है, ये सब कुछ होगा. तो भाई, मैं इतना कहना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में अगर छुट्टियां प्लान कर रहे हो ना तो पहले कतर के कैलेंडर को देख लेना, उसके बाद अपना कैलेंडर प्लान करना. जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप. सुखविंदर सिंह की आवाज़, मिका पाजी का साथ है, नहीं अगला खूबसूरत सा गाना. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।
2: रख, रख।

0: यार मुझे एक बात बताना, क्या तुम भी इस वक्त सही वक्त का इंतजार कर रहे हो?
1: मिर्ची अंशु
0: अच्छा नहीं, हमें से कितने लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ उसकी शुरुआत होगी, जरूर होगी, लेकिन सही वक्त आने पर। लेकिन यार सच तो ये है कि रास्ते पहले से कभी बनते ही नहीं, सही वक्त तो कभी होता ही नहीं। जैसे रास्ते चलते चलते बनते हैं, वैसे ही सही वक्त कोशिशों से आता है। शायद इसीलिए जिंदगी में अगर कोई शब्द हमने सबसे ज्यादा सीखा है तो वो है कंसिस्टेंसी। कि जिस दिन कुछ करने का मन करे उस दिन दिल से करो, लेकिन लगे कि नहीं यार आज नहीं, सही वक्त आने दो, तो उस दिन कुछ करो ना करो एक छोटा सा कदम जो है वो जरूर आगे लो। एंड इस बात पे ना मैंने कुछ लिखा है, सुनाती हूँ। एक ख्वाब चुनो और उसे अपना आसमान कर लो, छोटा ही सही एक सफर अपने नाम कर लो। देखो हर रोज मंजिल मिले ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रोज एक कदम बढ़े बस इतना सा काम कर लो। कभी धूप मिलेगी कभी शाम ढलेगी, कभी राहत तुम्हारे ही कदमों में बस आ चलेगी। तुम थकना जरा रुकना मगर लौटना नहीं, जो आग दिल में रखी है उसे कभी बुझाना नहीं। तो बस क्यों ना सही वक्त को हम खुद ही लिख दें। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vie est pas la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो हाँ जी बोलिए
4: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
3: आप बोलिए ना
4: कॉल आपने किया आप बोलिए
3: कॉल मैंने किया है हेलो
4: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
4: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
4: नींद में क्या
3: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
4: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
3: आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
4: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
4: हेलो
3: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं
4: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
3: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
4: फोन नहीं कर रहा अभी
3: मैं देख बदतमीज से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
4: चप्पल
3: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
4: आराम कर दिया तुम
3: जीना भाई यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
4: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: खट खट
7: हू दैट
6: जाहिर
7: जाहिर जाहिर हूँ
6: जाहिर सी बात है मैं ही हूँ और कोई नहीं
7: खट खट हू दैट
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: यार देखो बात इतनी है कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है ना ये बड़ी सिंपल और क्लियर है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे अपनी रिक्वायरमेंट तो बस इतनी सी ही है कि जब भी ट्रैवल पे निकले तो मजा भरपूर होना चाहिए लेकिन खर्चा ये जरा कम होना चाहिए। यार हम जब भी किसी हॉलिडे की प्लानिंग करते हैं ना तो तीन चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहली बात कि जगह कितनी अच्छी है, दूसरी एक्सपीरियंस कैसा होगा, एंड थर्ड ये पॉकेट पर कितना भारी पड़ेगा। वेल अगर इस वक्त मैं तीसरे डिपार्टमेंट की बात करूं और उन लोगों से लिंक करने की कोशिश करूं जो कतर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भैया तीसरे डिपार्टमेंट में कतर ने दुनिया भर में एक बड़ी छलांग लगाई है। वेल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में कतर ने 10 प्लेसेस की जंप लगाते हुए अब ग्लोबली 47th पोजीशन पर अपना नाम शामिल कर ही लिया है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टूरिज्म की प्राइस कंपेटिटिवनेस में कतर का स्कोर तकरीबन 49% इंप्रूव हुआ है जो दुनिया भर का सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है। लेकिन भाई साहब इसका मतलब क्या है? यार इसका मतलब बस इतना ही है कि कतर एक ऐसा ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुका है जहां पर बेटर वैल्यू और ज्यादा प्राइस कंपेटिटिव चीजें एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं। यहां पर ट्रैवल करना, स्टे करना और टूरिज्म एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करना कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर हुआ है। बढ़िया है जी, जब दुनिया की तकरीबन 3/4 डेस्टिनेशंस प्राइस बढ़ा रही हैं वहीं हमारा देश ऐसा है जो लोगों को बेटर एक्सपीरियंसेस देते हुए चीजों को ठीक कर रहा है। मैं तो कहती हूँ घर वालों को बुलाने का अच्छा मौका आ गया, इससे पहले की चीजें इधर उधर हो तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, तुमने घुमा फिरा दिया। यू नो जस्ट सेइंग। स्टेडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट। अगर कर।
6: अगर कर हूँ।
5: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
6: खट खट। Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: एक बात बताना, क्या आपने कभी वो 50 पैसे का गोला या 2 रुपए की कुल्फी खाई है?
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो, इस वक्त अगर मैं अपनी दास्तां बताने की कोशिश करूं तो बचपन के दिनों में माँ बाप और टीचर्स की डांट के अलावा अगर मैंने सबसे ज्यादा कुछ खाई है तो वो है 2 रुपए वाली कुल्फी। सही कह रही हूँ? मतलब स्कूल खत्म होने के बाद हमने सबसे पहले अगर धामा कहीं बोला है तो उस ठेले पे जहाँ पे 2 रुपए की कुल्फी एंड साथ में 50 पैसे का गोला हुआ करता था। भाई क्या दिन थे। इमेजिन करें, हम बर्फ गोला जो है मात्र 50 पैसे में खाया करते थे। एंड यार, जितनी

बेसब्री से हमने उस कुल्फी वाले भैया का इंतजार किया ना, उतनी बेसब्री से तो एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद हमारे माँ बाप ने भी हमारा नहीं किया। हमें सिद्धार्थ, इस वक्त अगर आइसक्रीम के आप भी उतने बड़े फैन है जितने की मैं हूँ, तो सीधा अगर आपको कहीं पहुंचना है तो वह है मॉल ऑफ कतर, जहाँ ओएसिस स्टेज में इस वक्त अगर आप कुछ एंजॉय कर पाएंगे तो वह है इंटरनेशनल आइसक्रीम शो। मतलब इतना बता दूं, जहाँ पे एक तरफ स्टीम है, एक्सपेरिमेंट्स है, क्रेजी कैरेक्टर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ आइसक्रीम की दुनिया का एक अनोखा एक्सपीरियंस है। एंड बहुत सा एंड यार, जितनी बेसब्री से हमने उस कुल्फी वाले भैया का इंतजार किया ना, उतनी बेसब्री से तो एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद हमारे माँ बाप ने भी हमारा नहीं किया। हमें सिद्धार्थ, इस वक्त अगर आइसक्रीम के आप भी उतने बड़े फैन है जितने की मैं हूँ, तो सीधा अगर आपको कहीं पहुंचना है तो वह है मॉल ऑफ कतर, जहाँ ओएसिस स्टेज में इस वक्त अगर आप कुछ एंजॉय कर पाएंगे तो वह है इंटरनेशनल आइसक्रीम शो। मतलब इतना बता दूं, जहाँ पे एक तरफ स्टीम है, एक्सपेरिमेंट्स है, क्रेजी कैरेक्टर्स हैं, वहीं

0: इम्पोर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा, ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
1: ये थे करण जौहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत ही

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: द होल थिंग इज दैट रुपया सबसे बड़ा है भैया।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो, मैंने बचपन से एक बात जरूर सीखी है और सुनी है कि भैया पैसा जो है ना, इससे ज्यादा मोह नहीं करने का। क्योंकि लोग बात कहते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो भी कमाया है बस यहीं छोड़ जाओगे। नहीं देखो, ये बात जो है 101% सही है। इसलिए अपनी जिंदगी की फिलॉसफी बड़ी सिंपल है, लेके ना कुछ आए थे ना ही छोड़ के जाएंगे भाई। लेकिन जिंदगी को चलाने के लिए जो पैसा है ना, उसे सही से उड़ाएंगे एंड बाकी अच्छी तरह से बचत भी करेंगे, ताकि आगे जो उड़ाने का सिलसिला है वो कंटिन्यू रख सके। जरा देखें कि आज का पैसा बोलता है तो क्या ही बोलता है। वेल, अगर आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आईपी मनी में 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.27, पाकिस्तानी रुपीज 76.15, बांग्लादेशी टका 33.78, नेपाली रुपीज 42.01 एंड साथ ही लंकन रुपीज 90.64। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: यार सच कह रही हूँ, कोई प्रमोशन कोई ऑफर आए या ना आए, लेकिन हाँ इसका आना जो है हमारी जिंदगी में बेहद जरूरी है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे बस उसी ऑफर उसी प्रमोशन की बात कर रही हूँ कि बदलते मौसम के साथ सर्दी और जुकाम का आना। हाँ ये ना आए तो उसके बगैर मौसम कैसे बदले। बल जहाँ पे एक तरफ गर्मियाँ जो है ऑफिशियली कतर से अलविदा कह चुकी हैं, ऑटम सीजन ने दस्तक दे दिया है, लेकिन वहीं बदलते मौसम के साथ सर्दी और जुकाम की लहर एक बार फिर से देश में देखने को मिल रही है। तो बल इतना ही कहना चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा एक फंडा है, एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, जब भी मुझे ऐसा लगे कि मौसम जो है वो बदल रहा है, आई मेक श्योर कि कुछ दिनों तक मैं रेगुलरली रात में सोने से पहले स्टीमिंग करती हूँ, एंड साथ ही गुनगुने पानी से नमक के साथ गार्गल करती हूँ। एंड सच कहूँ, इट हैज़ रियली हेल्प मी प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द वायरल इन्फेक्शंस। ये मेरा नुस्खा है जो ज़रूर काम आता है, शायद आपके लिए भी हो जाए। तो बस कुछ दिनों तक इसे अडॉप्ट कर लो, फिर बाद में ठंडी का मौसम आया, बल्कि आइसक्रीम खाएंगे आपके घर। एन्जॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Fermici.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieta la burga. Milci, burga.
2: Day, day, day, day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
3: Hello.
4: Hello, ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: थी किसी की पता नहीं किसकी थी
4: ना. आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
3: मैंने क्या किया
4: था? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपको यही डायलर टोन मिली थी. जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है मैं, मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
3: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप.
3: ना,
4: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
3: है. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
4: आपके कारण से. हंसा मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचती हुई लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हम सर. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamond काफी है. अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक. देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेज, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट. और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट. है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
7: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ. डेयरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन.
9: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स. संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से.
7: तो देर किस बात की? अपने फेवरेट डेयरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ. डेयरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड. तो देर किस बात की? सब कुछ आधे प्राइस में.
10: खट खट.
11: कौन है?
10: अज्जू.
11: अज्जू कौन?
10: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए.
11: खट खट. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हम इसे शॉपिंग नहीं कहते, हम ना इसे थेरेपी कहते हैं। मिर्ची अंशु यार सच कह रही हूँ, जब भी आप ज्वेलरी की शॉपिंग की बात करें, सोने चांदी की बात करें, तो हम लेडीज के लिए ना ये जो है सिर्फ एक शॉपिंग का जरिया नहीं या घर पे कुछ लाने का सामान नहीं है भाई साहब, हमारी और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी ये थेरेपी है। यानी बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जब घर की वुमेन खुश रहती हैं, अच्छी रहती हैं, तो घर का माहौल जो है वो कितना हसीन एंड खूबसूरत रहता है। आपसे बेहतर ये कौन ही समझेगा, तो चलिए क्यों ना एक बार फिर से इस थेरेपी को अपना लिया जाए। अरे अभी तो मौका भी है दस्तूरी अच्छे गोल्ड प्राइसेस का।
1: Stay ahead of today's gold rates with Alpardhan Exchange, PAMS of
0: Well, अगर आज आप परचेसिंग करना चाहेंगे तो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चून अबाउट टुडेज प्राइस एट कतरी रियाल्स 576, साथ ही अगर मैं बात करूं 5 ग्राम्स की सो इट इज प्राइस एट कतरी रियाल्स 2699, 10 ग्राम्स टुडेज प्राइस एट कतरी रियाल्स 5329, एंड साथ ही अगर 1 आउंस की बात करें सो इट इज प्राइस एट कतरी रियाल्स 16470। वहीं मैं अगर 10 तोले की बात करूं, तगड़ी शॉपिंग करना है सो इट इज प्राइस एट कतरी रियाल्स 61151। तो क्यों ना एक बार फिर से सोने चांदी की खरीदी जो है वो कर लिया जाए एंड घर के सुकून को कायम रखा जाए। स्टेडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
1: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्पवरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। माय ऑथेंटिक

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
6: जबरदस्त ट्रैक्स।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: गली के चक्कर लगाते हुए स्कूल कॉलेज टाइम में खुद को हीरो समझने वाले जीरोस को तो हमने बहुत देख लिया, लेकिन अब जरा असल हीरो से मुलाकात हो जाए।
1: मिर्ची अंशु।
0: और मैंने तो अभी से डिसाइड कर लिया है कि मैं जो हूँ वो रेड वाली गाड़ी को सपोर्ट करने वाली हूँ। वाले एक बार फिर से अगर कतर में किसी की वापसी होने वाली है, सो दैट इज मोटो जीपी। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 12th ऑफ मार्च से लेकर 14th ऑफ मार्च तक लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में अगर कुछ मचने वाली है तो वो है धूम। Absolutely, you heard it right. लेकिन सबसे खास बात, अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो इस बार कतर सीजन का सेकेंड राउंड होगा थाईलैंड के सीजन ओपनर के इमीडिएटली बाद। लेकिन कतर के MotoGP रेस की सबसे स्पेशल बात, द नाइट मैन। फ्लड लाइट्स के नीचे इंजन जो है वो रोड करती हुई, बाइक्स जो है पूरी तरह से फ्लाइट डाउन करती हैं।

एंड कतर एक बार फिर से MotoGP कैलेंडर की ओनली नाइट रेस बनने को है पूरी तरह से तैयार। तो मार्च 2027 का कैलेंडर अभी से सेट कर लीजिए, उसके बाद मुलाकात करेंगे। आपकी पीली गाड़ी का मुकाबला होगा हमारी रेड गाड़ी से। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Khat khat.
4: Kaun hai?
3: Ishant.
4: Ishant kaun?
3: Ishant Gadadhari Bhim. Ishant.
4: Khat khat. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: घड़ी का कांटा ना इस वक्त मुझे एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा है।
1: मिर्ची अंशु
0: कि अंशु तुमने अपनी खूबसूरत बातों से औरों का दिल तो बहुत भर लिया, अब जरा अपना पेट भी भर लो। सच कह रही हूँ, तुम चाहे कितना भी काम क्यों ना कर लो, बात करते करते जो इंसान थकता है उसके बाद जो उसे भूख लगती ना, उसका अंदाजा जो है तुम कभी नहीं लगा सकते। नहीं, वैसे तुम्हारे कान जो है ना, कानों के जरिए दिल तक मेरी बातें जो पहुंची हैं, तुम्हारा दिल जो है भर आया है। एंड इस वक्त मैंने सोच लिया अपने पेट भरने का इंतजाम करना है तो कैसे करना है। वेल, आज मैंने घर पर ना बड़ा ही कमाल का खाना बनाया हुआ है। आज मेरी स्पेशल मील है बाजरे की घाट। एब्सोल्युटली कभी कभी ना चेंज, स्पेसिफिकली जब मौसम बदलता रहता है तो मैं ऐसी गर्मा गर्म चीज़ों को, घाट के फॉर्म की चीज़ों को अपनी जिंदगी में शामिल करती हूँ किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो बस अब मेरी ये गोल्डन रेसिपीज जो है ना, हर दिन घाट के जरिए मेरी जिंदगी में शामिल होंगी एंड मैं हर दिन आपसे शेयर करती रहूंगी। वैसे व्हाट इज द प्लान फॉर योर लंच, क्या सोचा है? 5001896 लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग फ्रॉम यू। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, बट अभी फिलहाल मसलामा हबीबी, सी यू सून, एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए, सवाल क्या है?
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

मैं इस वॉर ऑफ वर्ड से थक चुका हूँ यार. आई डोंट वॉन्ट टू ब्लेम जेंजीज फॉर एनी थिंग. आई मीन दे आर गुड. आई एम इंस्पायर्ड बाई देम इन मेनी वेज. मिर्ची सुन रहा आप. मेरा नाम क्रिश है. तो इतनी सारी चीजें दुनिया में हो जाती हैं जेन अल्फा मिलेनियल इन सबको कुछ नहीं बोला जाता. जेंजीज को पकड़ा जाता है. क्यों ये क्यों है इतने बुरे? इतनी सारी चीजों में दे इंस्पायर अस अ लॉट. वो हमें बोलते हैं कि आपको नहीं करनी जॉब तो आप छोड़ दो ना. आप क्यों परेशान हो रहे हो? अपनी मेंटल स्टेबिलिटी क्यों खो रहे हो? बिजनेस स्टार्ट कर लो, अपना खुद का कुछ काम कर लो, ब्रेक लो, सांस लो, एंजॉय करो. और कहीं पे परेशान हो रहे हो तो आवाज उठाओ. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई तो सपोर्ट जेंजीज इन ऑल द वेज पॉसिबल. एम आई थिंकिंग राइट या कुछ गड़बड़ है यहाँ पे? आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है? आओ बात करते हैं. इंस्टाग्राम इज ओपन फॉर एवरी वन यार. मिर्ची क्रिश के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ. KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम. आ जाओ फिलहाल कुछ बढ़िया से गानों के साथ. आ जाओ उस पार मिलते हैं ओनली ऑन मिर्ची. It's all.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vietva la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया 2 दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो 1 दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया 9 दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया 9 दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए 3-3। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए 6-6। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए 5-5। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए 7-7। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका मुर्गा।
1: तो वही मैं सोच रहा था, मतलब
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: कट कट।
6: Who that?
5: जस्सी।
6: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
5: जस्सी who has come, आंटी जी।
6: कट कट। Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

मार्केट में एक नया ट्रेलर आया है एंड क्या बढ़िया मजेदार ट्रेलर है। धर्मा प्रोडक्शंस की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है उड़ता तीर, और ये एग्जैक्टली वैसी ही है मूवी, उड़ता तीर ही। बट दिस इज ट्रेंडिंग एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। सो ये मूवी इज बाय धर्मा प्रोडक्शन स्टारिंग आयुष्मान खुराना, साथ में इनके हैं सारा अली खान, इनके साथ हैं गुलशन ग्रोवर, देन साथ में है राम कपूर एंड आयुष्मान खुराना इसमें एक पाकिस्तानी स्पाई का रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें ही इज एन इंडियन देशभक्त। एक पाकिस्तानी स्पाई हैं जो कि एक इंडियन देशभक्त हैं बिकॉज उनकी मेमोरी जा चुकी है। सो केओटिक कॉमेडी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आयुष्मान खुराना इज डूइंग हटके कॉमेडी जो कि इतने टाइम से हम मिस कर रहे थे उनके बारे में। ऑल्सो मूवी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज एक ही ट्रेलर में इतने गैग्स और पंचेस हैं बैक टू बैक, तो आई थिंक मजा आ जाएगा। 9th अक्टूबर को ये मूवी रिलीज हो जाएगी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस मूवी इज नॉट क्लैशिंग विद दृश्यम 3 जो कि 2nd अक्टूबर को आएगी, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट अनदर मूवी कुछ टाइम पहले विच इज पहला प्यार दूसरी बार जो कि क्लैश कर रही है विद दृश्यम 3 एंड इट इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज आप दृश्यम 3 के साथ क्या सोच के, वो भी सारे के सारे नए एक्टर्स। बाकी आप बताना ये ट्रेलर देखा तो कैसा लगा आपको। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

म्यूजिक इंडस्ट्री में दो लोग ऐसे हैं जो जब भी एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बोलते हैं उनके फैंस को मजा आने लगता है। ऑफकोर्स मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे मैं किन दो लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है, आई एम टॉकिंग अबाउट बादशाह एंड यो यो हनी सिंह। 2024 में यानी अब से दो साल पहले एक ट्रैक आया था बाय बादशाह कॉल्ड गॉन गर्ल, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली तो कह ही नहीं सकते, अब तो डायरेक्टली बोलोगे इसको, कि उन्होंने एक डिस किया था बेसिकली यो यो हनी सिंह को बाय सेइंग कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। सो अब जाके यानी दो साल बाद यो यो हनी सिंह ने इसका जवाब दिया है, और वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। कासा टुपका एंथेमो जो नया ट्रैक आया है यो यो हनी सिंह का, उसमें उन्होंने बोला तेरी वोट का कहां गई, क्या हुआ बिकी ने, ये बेसिकली एक जाइव है डायरेक्टली बादशाह के रीसेंट वोट का ब्रांड वेंचर का। मैं कह रहा हूं देखो लड़ाई ये लोग करते हैं, मजा इनके फैंस को आ जाता है। देयर इज एन आर्मी प्रॉपर ना, बादशाह आर्मी वर्सेस यो यो हनी सिंह आर्मी। तो दो लोग कहीं कुछ कह दें हमें मजा आ रहा है ना। आप किसकी साइड रहते हो मैक्सिमम टाइम्स बताना। इंस्टाग्राम पे मिर्ची क्रिश के नाम से हूँ, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम, दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कौन है?
6: स्टेन।
5: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
7: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

यू जस्ट इमेजिन फॉर वंस कि आप काफी साल से किसी एक काम को परफेक्शन के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली गुड एट इट. अब आप एक दूसरा नया काम करते हो और वो रिकॉग्निशन जो इतने सालों से उस काम के लिए नहीं मिला आपको, इस नए काम में आते ही मिल गया. रणदीप हुड्डा की बात कर रहा हूं मैं, मिर्ची सुन रहा हूं आप. मेरा नाम क्रिश है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रणदीप हुड्डा विनिंग अ नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कैटेगरी. उन्होंने मूवी बनाई थी स्वतंत्र वीर सावरकर, उसके लिए उन्हें डेब्यू डायरेक्टर की कैटेगरी में अवार्ड मिल गया. अब वो कह रहे हैं कि आई एम ऑलवेज एन एक्टर फर्स्ट. भाई मतलब उनको बनना ही एक्टर था, वो तो अलग बात है कि टू बी रिकॉग्नाइज फॉर माई क्राफ्ट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एज अ डायरेक्टर, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए जितना भी खुशी मनाई जाए वो कम है ऑब्वियसली. लेकिन ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगा? इतने साल हो गए उन्हें, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में रणदीप हुड्डा ने हमें दी हैं एज एन एक्टर, और डायरेक्टर की कैटेगरी में पहला ही नेशनल अवार्ड. सही है. तो

आई थिंक इसमें ना उन्हें थोड़ा ये समझना चाहिए कि मे बी थोड़ा सा शिफ्ट करके अगर वो चेंज कर लें अपनी कैटेगरी तो इधर ज्यादा फायदा है। बाकी देखते हैं जैसी उनकी मर्जी। फिलहाल आप कुछ बढ़िया गाने सुनिए, ये हमारी मर्जी। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

देखो, ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स लिखना इज अ वेरी गुड थिंग ऑब्वियसली, लेकिन कुछ रियल लाइफ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिन्हें अगर ढंग से बताया जाए तो वो भी वर्थ वॉचिंग है। इसीलिए आज के पांच का पंच में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप फाइव बॉलीवुड मूवीज जिसमें एपिक स्टोरीज को थिएट्रिकल हिट्स में कन्वर्ट किया गया। स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर फाइव आती है एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। 2016 में आई ये मूवी स्टारिंग सुशांत सिंह राजपूत, दिशा पाटनी, कियारा आडवाणी, अनुपम खेर, डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे, बेस्ड ऑन धोनी रियल लाइफ जो इनिशियली इंडियन रेलवेज में काम करते हैं बट इवेंचुअली इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं एंड बिकम्स टूडे थाला फॉर अ रीजन। दिस मूवी हैड बीन वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत ऑब्वियसली। फिर आती है नंबर फोर पर पान सिंह तोमर। 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग दी ओजी इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड माही गिल, डायरेक्टेड बाय तिग्मांशु धूलिया। यस, वही तुमसे ना हो पाएगा वाले। मूवी इज बेस्ड ऑन पान सिंह तोमर हिमसेल्फ जो एक ऐसे एथलीट थे जिन्होंने 7 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता एट द इंडियन नेशनल गेम्स, बट कैसे उनकी लाइफ में एक डाकू बनना ऐड हो गया। मूवी ऑब्वियसली काफी अच्छी है सिंस इरफान खान इज पोर्ट्रेइंग द लीड रोल, तो कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है, राइट? आगे की लिस्ट अगर आप गेस करना चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पर आके गेस करो। माय इंस्टाग्राम इज मिर्ची क्रिश, KRISH इज द स्पेलिंग। दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virba la burga.
0: Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी, नमस्कार। जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाला एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा नहीं वही
3: मैं आपको बता रहा हूँ सर। आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर, मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे।
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

वो रियल कहानियां जिन्हें बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे से दिखाया गया। आज की पांच का पंच में हम बात कर रहे हैं उन टॉप फाइव बॉलीवुड बायोपिक्स के बारे में जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छी थी। नंबर पांच पे मैंने आपको बताया एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के बारे में। फोर्थ पर हमने बात करी पान सिंह तोमर के बारे में। अब थर्ड पे आती है गंगूबाई। 2022 में आई ये मूवी स्टारिंग आलिया भट्ट, शांतनु महेश्वरी एंड विजय राज, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, अ स्टोरी बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स फ्रॉम 1940s, जो प्रोस्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स एंड अंडरवर्ल्ड की कहानी दिखाते हैं। एंड नीडलेस टू से दैट आलिया भट्ट वाज फ्लॉलेस इन द लीड रोल। प्लस एस्थेटिक्स पे आप ज्यादा सवाल उठा नहीं सकते, बिकॉज व्हेन इट्स अ संजय लीला भंसाली मूवी तो सब कुछ नियर परफेक्ट ही होगा। फिर आती है सेकेंड नंबर पर वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स, भाग मिल्खा भाग। 2013 में आई ये मूवी स्टारिंग फरहान अख्तर, सोनम कपूर, योगराज सिंह एंड दिव्या दत्ता, डायरेक्टेड बाय राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इज वन ऑफ माय फेवरेट्स बिकॉज ये बनी है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बारे में, जो कि पार्टीशन के स्ट्रगल्स के बाद एक ऐसे एथलीट बनते हैं जिन्होंने इंडिया के अपकमिंग एथलीट्स को बेहद इंस्पायर किया। दिस मूवी शोज ऑल ऑफ हिज स्ट्रगल्स ऑफ पार्टीशन एंड हाउ ही ओवरकेम देम टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन एंड एन आइकॉनिक इंडियन एथलीट। I just love this movie. मैं ये कितनी भी बार देख सकता हूं। अब नंबर वन पे कौन सी बायोपिक आती है वो आप गेस करके बताओ। इंस्टाग्राम पे मिर्ची क्रिश के नाम से अवेलेबल हूं। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। आ जाओ वहां बात करते हैं। दिस इज मिर्ची एच

बायोपिक्स हो तो ऐसी हो यार। यस मिर्ची पर मैं हूँ क्रिश और हम बात कर रहे हैं आज के पांच का पंच में उन पांच बॉलीवुड बायोपिक्स के बारे में जो वाकई में एपिक है। नंबर 5 पे हमने बात करी एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के बारे में। नंबर 4 पर आई पान सिंह तोमर। नंबर 3 पर आई गंगूबाई। फिर नंबर 2 पर आई माय पर्सनल फेवरेट भाग मिल्खा भाग। अब नंबर 1 की मूवी बताने से पहले एक स्पेशल मेंशन तो डेफिनेटली बनता है। ये स्पॉट जाता है सरदार उधम को। 2021 में आई ये मूवी स्टारिंग विकी कौशल, डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार, बेस्ड ऑन इंडियन रिवोल्यूशनरी उधम सिंह जी, जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर का रिवेंज लिया था। ये मूवी बहुत सटल तरीके से इस पूरी स्टोरी को दिखाती है दैट इट इवन वन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म। अब आता है नंबर 1 स्पॉट जो कि ऑब्वियसली जाता है दंगल मूवी को। 2016 में आई ये मूवी स्टारिंग आमिर खान, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी जी, बेस्ड ऑन महावीर फोगाट्स लाइफ जो कि एक फॉर्मर रेसलर रह चुके थे पर बेटे ना होने के बाद भी उनके बचे हुए ड्रीम्स उनकी बेटियों ने पूरे करे। इस मूवी की सक्सेस आज तक कोई बॉलीवुड मूवी बीट नहीं कर पाई है बिकॉज इट इज स्टिल द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी ऑफ ऑल टाइम। सो नीडलेस टू से व्हाई दिस मूवी टेक्स अ फर्स्ट स्पॉट। अगर आपको लगता है कि मैं कोई ग्रेट बढ़िया बॉलीवुड की एपिक बायोपिक मिस कर रहा हूं तो आप मुझे बता दो। इंस्टाग्राम पे मिर्ची क्रिश के नाम से आपको मिल जाऊंगा। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। आ जाओ वहां बात करेंगे। फिलहाल कुछ बढ़िया गाने सुनेंगे ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट, और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड।
6: कट कट।
7: अबे कौन है?
6: उत्तपा।
7: उत्तपा कौन?
6: उत्तपा मैं दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
7: खट खट हो दैट।
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची इट्स हॉट।

स्कैम ऐसा हो कि स्कैमर खुद आपके साथ फोरम पर आकर डिस्कस करे कि उसने कब किया, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। तो बात ऐसी है कि एक ऐसा स्कैम हुआ जिसकी वजह से आधी रात तक लोग जाकर फोरम पर डिस्कस करते रहे। इस इंसान का नाम था जय सिंह राठौर। इन्होंने एक्स या ट्विटर पे ट्वीट करा और बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है बिकॉज मुझे मेरी बहन की आंखों का ऑपरेशन कराना है। तो क्राउड फंडिंग हुई, काफी सारे लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया एंड देखते ही देखते इस आदमी ने 1.5 लाख रुपए तक इकट्ठे कर लिए। उसके बाद फॉलो अप के लिए हॉस्पिटल का बिल भी दिखाया कि ये देखो आपके पैसों की वजह से मेरी बहन का ऑपरेशन हो गया। लेकिन जब उस हॉस्पिटल से बात करी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई पेशेंट हमारे पास आया ही नहीं है, ये सब कुछ फेक है। तो फिर एक फोरम बना, आधी रात को डिस्कशन चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या हुआ है, हमसे भी पैसे लिए गए, वो कोई कह रहा है हमसे भी पैसे लिए गए। सडनली बीच में जय सिंह राठौर जी खुद आते हैं और कभी तो बोलते हैं कि मैंने अपनी बहन का नाम इसलिए लिया बिकॉज ये तभी स्प्रेड होती न्यूज, अदरवाइज मेरे पापा को जरूरत थी। कभी कहते हैं कि हाँ सच में मैंने स्कैम किया है, ये मेरा पहला स्कैम है, मैं नर्वस था। और बीच में चाय ब्रेक ले रहे हैं, बात करते करते ऑर्डर दे रहे हैं कि एक चाय लगाना जरा। ये स्कैमर हो तो एंटरटेनमेंट हो जाए पूरा। मतलब जनरली 3-4 बजे तक जब कोई जागता है ना तो मूवीज देखता है, सीरीज देखता है, यहां डिस्कशन चल रहे थे स्कैमर के साथ ही, स्कैम से रिलेटेड। आई मीन दिस इज अ स्कैम ऑफ द सेंचुरी भाई, ये बहुत बड़ा है मेरे लिए। तो पैसे मायने नहीं रखते, स्टाइल मायने रखता है। बाकी आपको पता था इसके बारे में, मुझे बताना इंस्टा पे, मिर्ची क्रिश के नाम से हूं मैं, KRISH, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

इतनी चुभने लगी है ना इनकी बात, सही बता रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट रिति तिवारी। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। बिग बॉस में रिति तिवारी की आवाज लोगों को चुभने लगी है, एंड आई एम नॉट दी ओनली वन हु इज सेइंग दिस। लोग परेशान हैं, इतने सारे आपको मीम्स मिल जाएंगे, ट्रोल्स मिल जाएंगे इस समय सोशल मीडिया पे। हु आर जस्ट सेइंग कि रिति तिवारी इज जस्ट जेलस, शी इज ट्राइंग टू लॉन्च हर करियर। इनफैक्ट माही विज ने भी एक एपिसोड में बोला कि यार देखो, वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई है कि यहाँ से उसको एक स्टार्ट मिल जाए। ऑफ कोर्स देयर आर कंटेस्टेंट्स, इसके प्रूफ्स हैं कि पास्ट में जितने लोग आए हैं उनको कुछ ना कुछ काम मिला है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं लॉन्च ही इसे होना चाहती हूँ। अब वो क्या बात बात पे गाना गा रही हैं, काजी से चिढ़ रही हैं, वो सब बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी रिसेंटली आपने एक प्रोमो भी देखा होगा कि उनका झगड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने कुछ ही अभद्र भाषा का प्रयोग करा काजी पे, एंड काजी ऑल्सो लॉस्ट हिज कंट्रोल। बिकॉज ये गालियां नहीं देनी होती ना, आप थोड़ा सा मैच्योर बने पहले। मेरे को इनको देख के इरिटेशन होने लगती है, घर वाले फिर भी महान हैं जो इनको झेल रहे हैं। गेम के नाम पे करना पड़ता है यार, लेकिन आई एम नॉट दी ओनली वन हु इज सेइंग दिस। डू यू अग्री विद मी ऑर नॉट, रिति तिवारी इज गेटिंग टू मच नाउ। मिर्ची क्रिश के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। आकर मुझे बताना अपना पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट हर। दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua, la burka. Mirci, burka.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी चले हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: आप देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता ना कहाँ कहाँ से आता है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा हूँ भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए तो अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ सारी बाहर आ रही है तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट
5: अरे भाई गुस्सा मत कर इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM Mirchi 1 It's hot.

In a world where we have such talented actors like Pankaj Tripathi ji, Nawazuddin Siddiqui, Manoj Bajpayee, aaj bhi aise messages aana. भाई इसका मतलब क्या हुआ यार कि वी आर लुकिंग फॉर ओनली रिच लुकिंग एक्टर्स, ओनली द पीपल हु आर रिच लुकिंग शुड अप्लाई. ये ऐसे ऐसे मैसेजेस अभी तक आते हैं फॉर कास्टिंग कॉल्स मूवीज में, सीरीज में. प्रतीक गांधी ने खुद बताया कि उनके जो इनिशियल एक्टिंग करियर थे उसमें उनको काफी बार रिजेक्ट कर दिया जाता था बिकॉज स्टोरी की डिमांड थी कि वो रिच दिखना चाहिए बंदा. अब वो रिच नहीं दिखते थे तो इसमें उनकी क्या गलती. भाई मेकअप नाम की चीज होती है, कपड़ों की चीज होती है, एक्सेसरीज होती है, उससे इंसान रिच लग सकता है ना. ये कैसी बात कर दी है आपने. अर्शद वारसी ने खुद बोला कि ये बहुत स्टुपिडेस्ट चीज है अगर कोई कास्टिंग एजेंसी आपको ये कह रही है कि सिर्फ रिच लुकिंग पीपल चाहिए. सो इसका कोई सेंस नहीं बनता है. आज की डेट में भी टैलेंट नहीं देखा जा रहा तो क्या हुआ. प्रतीक गांधी 2020 में आई सीरीज से फेमस हुए थे, उससे पहले उनको काम इसीलिए नहीं मिला काफी बार बिकॉज वो रिच नहीं दिख रहे थे, स्टोरी की डिमांड के हिसाब से नहीं दिख रहे थे. 1992 स्कैम आया था जो बिकॉज ऑफ दैट प्रतीक गांधी बिकेम फेमस. एंड कई बार आर्टिस्ट को इतने टाइम तक, इतने सालों तक स्ट्रगल करना पड़ता है बिकॉज ऑफ जस्ट द लुक्स अलोन. लुक्स तो ऐसे चेंज हो जाते हैं यार, ऐसे. मैं मतलब चुटकी मारी है आपको, बाज कम आई तो है ना. तो आई डोंट नो, दिस इज एक्चुअली द स्टुपिडेस्ट. ये मैं भी मानता हूँ. अर्शद वारसी, आई एम सपोर्टिंग यू. फिलहाल आप कुछ बढ़िया गाने सुनो ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

मतलब कितना कैजुअली बोल देते हैं ना हम कि यार ऑनलाइन स्कैम होते हैं, वो पहले वाला जमाना सही था, एटीएम गए पैसे निकाले, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, बिकॉज आपको बस पिन छुपा के डालना है और क्या। लेकिन ऐसे कैसे सर, इतना कैजुअली होती नहीं है हर चीज, आपका ही भ्रम तोड़ते हैं। चलो मिर्ची सुन रहा, मेरा नाम क्रिश है एंड महाराष्ट्र में थाने के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया बिकॉज उसने क्या किया, एक महिला के अकाउंट से 2,90,000 रुपए चुरा लिए। अब ऐसा लगेगा कि ऑनलाइन स्कैम है, लेकिन नहीं, ये महिला एक्चुअली एक एटीएम में गई थी पैसे निकालने के लिए। उन्होंने अपना कार्ड डाला, उनका कार्ड अटक गया। एटीएम मशीन के पीछे एक वॉकी टॉकी रखी थी। अब वो वॉकी टॉकी के थ्रू इनसे बात करने लगा और इन्हें बताने लगा कि आपका कार्ड अटक गया है, अच्छा अब आप ये करो, अच्छा अब आप ये बटन दबाओ, इसके बाद आप अपना पिन डाल दो। ये सब कुछ उनसे करवा लिया, इनके अकाउंट से 2,90,000 भी अपने अकाउंट में कर लिए और फंस गया। अब इसको अरेस्ट किया गया हालांकि, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि अब ये भ्रम छोड़ दो कि पुराने जमाने में स्कैम नहीं होता था। देखो अब स्कैमर्स भी इंटेलिजेंट हो गए नए जमाने के साथ, वो पुरानी जगहों पर भी नए तरीके से स्कैम कर रहे हैं। सो वेर एवर यू गो, बी इट एटीएम ओनली, बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। फिलहाल कुछ बढ़िया से केयरफुली गाने सुनते हैं ओनली ऑन मिर्ची, इट्स ऑल।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: चलो आज की रिकमेंडेशन देता हूँ आपको एक हॉरर मूवी की। And when I say a horror movie, I mean genuinely horror movie, not the ones जिसमें आप predict कर सकते हो कि आगे क्या होगा। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है, and this is time for
1: OTT and chill.
0: So this is about a real case जो कि 2005 में हुआ था। ताइवान में 6 लोग एक ही फैमिली के, उन्हें लगा कि उन्हें किसी चाइनीज डीटीज ने पोजेस कर लिया। अब ये एक दूसरे का एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करने लगे, जिसमें उन्होंने सेल्फ हार्म भी करा, एक दूसरे को हार्म भी करा, और इन सबकी डेथ हो गई इन दिस प्रोसेस। डॉक्टर्स ने इसको मास हिस्टेरिया कहा, लेकिन काफी लोग ये मानते थे कि ये सही में एक बहुत बड़े पोजेशन का केस था। ये मूवी इसी केस के ऊपर बनी, जिसका नाम है इनकैंटेशन। 2022 में ये हॉरर मूवी आई थी, विच इज अ पीओवी शॉर्ट मूवी, यानी कि एक फाउंड फुटेज जॉनरा की मूवी है। अब ये मूवी एक कॉन्सेप्ट पे बनी है, विच इज कि आप ये जो फुटेज दिखाई जाएगी इसमें, इसको आप जितना देखोगे आपको उतना ज्यादा डर लगेगा। बट ट्रस्ट मी, जब ये पूरी मूवी खत्म हो जाएगी ना, तो आपको एक अलग टाइप का डर लगेगा। सो इफ यू आर जेन्युइनली लुकिंग फॉर अ वेरी गुड हॉरर मूवी, गो एंड वॉच इट। मूवी का नाम है इनकैंटेशन। डू लेट मी नो कि आपको कैसी लगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर, विच इज मिर्ची क्रिश, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
2: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
1: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
4: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
5: बहुत कुछ होगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।
2: रॉक, रॉक,

0: आज सैटर्न जो है मून के पास दिखाई देने वाला है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स के लिए बुला रहा है, जो कि स्पेशल होगी। किस तरह से कतर सेमीफाइनल पहुंचा है हैंडबॉल के इन एशियन गेम्स, ये बताएंगे। और किस तरह से हाउसहोल्ड वेस्ट इन 20-25% का 45% जो है वो यूज किया गया, ये सब कुछ आज आपको यहां पता लगेगा। लेकिन एक बात जो हमें पता लग गई है कि मौसम अपनी चाल बदल रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी से बदलने नहीं दे रही है दोस्तों। दो चार दिन की और बात है, देखिएगा कैसे ये 10 दिन निकल जाएंगे पता ही लगेगा। शाम के 4:04
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वही हम बता दें कि थाईलैंड में जो कतर से लोग गए हैं उनको भी वार्न किया गया, वहां हैवी रेन एंड फ्लड का रिस्क है, ये इन्फॉर्म कर दिया गया। अगर आपके भी कोई दोस्त यार इस वक्त थाईलैंड में घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो उन्हें भी याद दिला देना। इन सब के बीच कतर किस तरह से डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारी विजिटर जर्नी को, और फ्यूचर ऑफ ट्रेवल क्या है, ये सब कुछ यही आज पता लगेगा। कान खोल लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, मिर्ची लगा लो, भैया आ गया मस्त मोलो गौरव लेकर ढेर सारी बातें। हम कुनाफा भी खाते एंड बकलावा भी खाते, तो बस जिंदगी में खाते पीते रहो, मस्त रहो, टेंशन बिल्कुल नहीं हबीबी, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो गुल्लक मिर्ची, क्योंकि ये हरारा है, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Isca bana, usca bana, saca bana. Rabana. Burga, burga. La vie va la burga. Mirchi, burga.
2: Hello?
3: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,9,83।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका मुर्गा।
2: तो वही मैं सुन रहा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को,
2: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ। डेयरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
7: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
6: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेयरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेयरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
8: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
8: This initiative is driven by GWM.
9: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं,
10: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा।
9: Relative से advice लो तो कहते हैं,
11: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा।
9: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो।
12: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
13: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: गाड़ी तो महंगी बहुत खरीदी होगी, लेकिन गाड़ी के नंबर प्लेट के लिए पैसे खर्चे हैं क्या?
1: मस्त मौला गौरव।
0: अगर नहीं तो आप मेरी तरह ही कंजूस हैं, या फिर ये समझ लीजिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर खर्चने की तैयारी कर रहे हैं तो एक जगह है जहां आपको फैंसी नंबर्स मिलने वाले हैं।
2: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यहां बता दें, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने हम सबको बताया कि वो अब स्पेशल व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर रिलीज करने जा रहे हैं। इन नंबर्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन में जाकर सूम ऐप पर आपको इंटरेस्ट दिखाना है। October 1st, 2026 सुबह 10 बजे से वो सारे स्पेशल नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे जिनको आप खरीद सकते हैं सोम ऐप पर। याद रखिए, इसके लिए बिडिंग करनी है, खरीद सकने के लिए बिडिंग करनी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सोम ऐप पर जाना है, वहां जाकर एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट बटन को क्लिक करना है और अगले 72 आवर्स में अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो पे कर देना है। इसके बाद एक 24 आवर का इंटरनल ऑक्शन होगा। अगर किसी और ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो नंबर खुद ब खुद आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कॉम्पिटिशन हो गया, लोगों ने कहा नहीं हमें भी ये नंबर चाहिए, तो जो हाईएस्ट बिडर होगा नंबर उसके नाम आ जाएगा। अब सोचिए कि गाड़ी तो अभी तक आप बढ़िया खरीदी रहते, लेकिन अगर नंबर प्लेट ऐसा हो जाए 786 टाइप या फिर 111 टाइप, 555 टाइप, तो एक अलग ही भौकाल हो जाता नहीं मार्केट में। वैसे मैंने देखा है कतर में कई लोगों के पास गाड़ियों से भी तीन तीन चार चार गुना ज्यादा महंगी नंबर प्लेट्स हैं। मतलब गाड़ी अगर मान लीजिए 300-400,000 की है तो उनका नंबर मिलियंस में है। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं कि शौक तो बहुत देखे, लेकिन नंबर प्लेट का ये शौक हमारे कतर में दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है भैया। तो अगर आपके भी ऐसे कोई अमीर दोस्त हैं जिन्होंने गाड़ी के नंबर के लिए गाड़ी से ज्यादा रकम दी है, तो उनसे हमारा नंबर भी शेयर कर दो भाई। हैं, थोड़ा तो उधार मिल जाएगा, महीने का आखिरी चलने सर। 89.6 मिर्ची वाली छोड़
3: फिर से

0: भाई हम लड़के तो दिल तब हारे थे जब नवंबर के महीने में इंडियन टीम 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप हार गई थी यार। मस्त मौला गौरव। पूरे 3 साल हो गए, जख्म आज भी हरे हैं। फिलहाल के लिए मस्त मौला गौरव दिल हारने के नहीं जीतने की बात करता, और दिल आप तब जीतते हो जब आप एकदम समझदारी भरे फैसले लेते हो, और वो समझदारी के फैसलों में एक फैसला आपको लेना चाहिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ रिटर्न जबरदस्त मिलते हैं। तो गोल्ड रेट फ्रॉम अल फरदान एक्सचेंज
1: गोल्ड अपडेट।
0: अगर बात करें तो अल फरदान एक्सचेंज जो हमारे कतर में है, पैम के सर्टिफाइड एजेंट, जहां मिलती है आपको स्विस की गारंटी एंड स्विस 24 कैरेट के पैम 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 576 कतारी रियाल, पैम 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार एट 2699 कतारी रियाल, पैम का 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आपको मिलेगा 5329 कतारी रियाल, पैम्प 1 ounce गोल्ड लेडी बार 16,470 एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज एट 61,151 कतारी रियाल। मैं तो कहता हूं मैं जब भी इन्वेस्ट करूंगा 10 तोले में ही करूंगा, उसके लिए पैसे जुटा रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास छोटी छोटी पूंजी आ रही है जुटा रहे हो पैसे तो 1 ग्राम में भी कर लो ना एट 576 कतारी रियाल। वेल ये सेफेस्ट रिटर्न विद द बेस्ट रिटर्न ये भी कह सकते हैं। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव बताया अल्फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स पैम के मिर्ची। इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars and earn

0: लावे हम तो अच्छे अच्छे मौसम को, न जाने ये आएंगे कब कतर को।
1: मस्त मौला, मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: 89.6 BG1 पर हम में से हर किसी का इंतजार है कतर के बेहतरीन मौसम के आने का, लेकिन जब तक नहीं आ रहा दोस्तों, तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सूरज चाचू थोड़ी बहुत चमकान कम करते रहो।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: वैसे बात करें तो भैया जबरदस्त तरीके से आज हमारे कतर के आसमान में नजर आएगा सैटर्न एकदम मून के पास में। हाँ जी, आज रात जब आप चांद निहारेंगे तो उसके बगल में जब एक चमकती चीज दिखेगी तो ये समझ जाइएगा कि वो मून है। September 27, 2026 5:50 पर एक जबरदस्त घटना होगी जो आसमानों में आप अपनी आंखों से देख पाएंगे, कोरी आंखों से। एंड ये दो सेलेस्टियल बॉडीज एरियल में अपने आप नजर आने वाली हैं अराउंड 5:50 PM। हम सबको देखना और टैग भी करना है, मस्मोलो गौर ने बताया है। वैसे बात करें तो तापमान का हालचाल लगातार जबरदस्त बना हुआ है। आज भी अगर हमारे कतर की बात की जाए तो गर्मी का आलम बना हुआ था दोस्तों, विद मैक्सिमम ऑफ 39°C, मिनिमम अराउंड 30। हालांकि ह्यूमिडिटी आज रोज के मुकाबले थोड़ी कम लग रही है, लेकिन जैसे जैसे घटती जाएगी चीजें बेहतर होंगी। 46% ह्यूमिडिटी और हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर से भी कम। शाम को थोड़ा तपन महसूस करेंगे आप ह्यूमिडिटी की वजह से। 89.6 मिर्ची वन, वेदर का सस्ता एक्सपर्ट मॉक गौरव, मिर्ची थॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: हाँ जी, इश्क जैसा कुछ ये गाना सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव
0: जब आपके साथ है तो देवी और सजनों इतना ही कहना चाहता हूँ, मिर्ची घड़ी का टाइम बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका समय अच्छा चल रहा है, तो अच्छी अच्छी चीजें कीजिए। 5:07
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: एंड ऐसे में जब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ तो टाइम आता है इस घंटे खेलने का, वो जिसे कहते हैं और आज की आवाज सबसे बहुत ज्यादा इजी सरल पेपर, बताइए किसकी आवाज है।
3: और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था, तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था।
0: बस एक ऐसा पीरियड चला था, मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था, एक बार फिर से सुनिए।
3: और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था, तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था।
0: 5:00 पर मस्पोलो गौरव इंतजार कर रहा है आपसे, जाना चाह रहा है, आपको बताना है कि ये किस एक्टर की आवाज है।
3: और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था, तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था।
0: बस 5:00 पर मस्पोलो गौरव कर रहा है इंतजार, जहां आपको बताना पड़ेगा मेरे यार कि आखिरकार ये कौन सा एक्टर है जिसकी आवाज मैंने यहाँ पर सुनाई। और जितनी देर में मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, धमाधम आंसर आने शुरू हो गए। 5:00 पर आपको भेजना है अपना जवाब कि गौरव यार तुम जिसकी आवाज सुना रहे हो वो तो फला एक्टर है। 5:00 पर बादशाह हितेन शर्वी यादव लेकर आए हैं बैंगर गाना, आप वॉइस नोट में अपना जवाब भेजते जाना, हम अगली बार सही आंसर सबको सुना देंगे मेरे यार। मिर्ची इट्स हॉट।

भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: Kahve Mirci.
1: İskabana puskabana sakabana. Ya bana. Burga burga. Ne bir bala burga. Mirci burga.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
3: Hello,
4: ये हंसा से मेरी बात करा हो भाई.
3: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है, आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
3: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
4: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप.
3: ना,
4: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
3: सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
4: होगा आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, इट्स हॉट. मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
6: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
7: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back.
8: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
6: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
9: Arey wah, ice cream and cake lovers, ready ho jao. Dairy Queen laya hai dhamakedar special promotion.
6: Hanji, 26th se 30th September. तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से, और केक सिर्फ QR 60 से.
9: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ. डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड. तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में.
10: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है. अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
11: Ja Simran, ja jee le apni zindagi. Ja beta, ja.
12: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
13: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
14: हिट गाने
15: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
16: 89.6
17: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हरनूर श्रेया घोषाल पंजाबी वर्जन का ये हिंदी वर्जन शानदार तरीके से किसने सुनाया? और अभी भी हम और आप मिलकर शाम के खमसा बाजकर वाहदो श्रीन मिनट पर खेल रहे हैं, वो जिसे कहते हैं एक आवाज आपके कानों में भेजता हूँ, आपको बतानी होती है किसकी आवाज है।
1: और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था, तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था। एंड क्योंकि
0: मैं लास्ट बेंच पर बैठा करता था, मैंने पूछा किस एक्टर की आवाज है।
2: रणबीर कपूर।
3: हाय गौरव, दिस इज अभिलाष, द वॉइस नोट दैट यू प्लेड इज ऑफ रणबीर कपूर।
4: हाय गौरव, ये आवाज है रणबीर कपूर की।
2: गौरव जी, जॉन अब्राहम।
0: जॉन अब्राहम।
5: हाय गौरव, ये जो एक्टर का नाम है वो है रणबीर कपूर। सोहन हियर। थैंक यू।
6: हेलो आरजे गौरव, दिस इज राम। ये जो आवाज है रणबीर कपूर की है। शॉर्ट शॉर्ट रणबीर कपूर रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हां गौरव, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया,
7: मैं खालिद बात कर रहा हूं। सही जवाब है रणबीर कपूर।
8: हाय गौरव, गुड इवनिंग, इट्स रणबीर कपूर, माय फेवरेट।
9: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू? कैसे हैं?
0: गुड गुड यू भाई।
9: हां, ये आवाज है रणबीर कपूर की। बहुत सारे लिसनर्स जवाब देंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
0: बिल्कुल सही बोला, बहुत सारे लिसनर्स ने जवाब दे भी दिया है। एंड मुझे लगता है सिर्फ एक फेल कर गए जिन्होंने जॉन इब्राहिम की आवाज कह दी, अदरवाइज एवरीबॉडी इज राइट। एंड कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूंगा। यस अक्षिता, आपका भी आंसर सही है, रणबीर कपूर। इसके अलावा शांतनु, बिल्कुल सही जवाब है, रणबीर कपूर। श्वेता, रणबीर कपूर इज द राइट आंसर। राहिल भाई, रणबीर कपूर इज द राइट आंसर। ये हैं हमारे, यस अशफाक भाई, बिल्कुल सही है, रणबीर कपूर। कुल मिलाकर रणबीर कपूर के फैन इतने तगड़े फैन है ना उनके, मतलब उनकी दो सेकंड में आवाज सुने तो बोलेंगे अरे ये तो रणबीर कपूर है। हाँ जी, रणबीर कपूर की आवाज में यह गाना आपने सुना 89.6 मिर्ची 1 पर, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अगर अपनी कार में आप मेरी तरह से नहीं गा रहे हैं तो फिर क्या आप केके के फैन है यार। लेजेंडरी केके जिनकी आवाज से ही आपके अंदर सब कुछ बदल जाता है एंड आप ऐसे ही गाने लगते हैं। फिलहाल मस्त मौला गौरव आपके साथ, तू ही मेरी शब है गैंगस्टर का ये गाना एंड इसने हमारी बहुत सारी अलग अलग यादों से हमें मिला दिया है। बिल्कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं कि एक दौर था जब हम ऐसे गानों को दिन दिन भर सुनते थे एंड सीडी प्लेयर पर बार बार रिपीट मोड ऑन करके भी थकते नहीं थे। वेल, कुछ चीजें हमें हमारे बचपन से जोड़ती हैं और उनमें से एक है आसमान की ऊंचाइयों में होने वाली सेलेस्टियल एक्टिविटीज। और आज एक ऐसी एक्टिविटी अब से चंद मिनटों के अंदर होने जा रही है। अगर आप कार चला रहे हैं जल्दी से घर पहुंच जाइए, 5:50 के आसपास आज चंदा मामू के पास, बोले तो मून के पास, आपको दिखाई पड़ने वाला है हमारा प्लैनेट सैटर्न। यस, स्काई वॉचर्स विल विटनेस सैटर्न टुडे एट अराउंड 5:50 September 27th। हमारे और आपके इतिहास के लिए एक खूबसूरत दिन होगा। कतर हाउस कैलेंडर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि आज हम अपनी कोरी आंखों से देख सकते हैं सैटर्न को मून के पास। तो जैसे ही आपको चांद दिखाई दे, चांद के पास अगल बगल चमकता हुआ जो भी दिख रहा है, समझ जाइए वो सैटर्न प्लैनेट है। इट्स अ सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड उसकी रिंग के लिए उसे जाना जाता है। तो आज क्या हम वो रिंग देख पाएंगे? और अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो यार आप मोर लकी वन हो। फिलहाल हमने स्टूडियो की खिड़की से बाहर निहारना शुरू कर दिया है, आप भी करो क्योंकि आज ये दिन है जब हम सैटर्न को अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी लेंस के, बिना किसी टेलीस्कोप के। सो आई एम वेरी श्योर अगर मौका आए तो आइए मिलकर इसे एंजॉय करें। एंड अगर तस्वीरें कैद करो तो मिर्ची वन कतर को टैग जरूर करना, मस्त मौला गौरव टाइम पे याद दिलाता है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: I like that song.

0: फकर द फिल्म्स नेम।
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

हाँ जी, दिल चोरी साड़ा हो गया, लेकिन हमारा तो वॉलेट में ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे वॉलेट ही पूरा चोरी हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं भाई साहब। क्या करिएगा, देखिए जब 7 तारीख चल रही हो 27-28 की, तो वॉलेट का खाली होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपके पास है तो घर भेजो पैसे, हम बता रहे रेट। पहले तो देखिए मून के पास सैटर्न दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, आज सबसे करीब दिखने वाला है मून के सैटर्न प्लैनेट, एंड इसकी रिंग भी आपको दिखेगी अपनी कोरी आंखों से। इन सब के बीच अगर पैसे दिख रहे हैं तो फटाफट घर भेजो, एक कतरे रियाल के बदले इंडियन रुपीज 26 रुपए 27 पैसे 26.27 INR, एक कतरे रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.64। वहीं अगर पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.15 पाकिस्तान रुपीज, तबाई को नेपाल रुपीज आजो एक रियाल के बदले 42.01 का रेट है। हाँ जी दाई 42.01 भाई नहीं आजूर घर भेजन लाई सही टाइम छो। अगर बंधु इसके बाद बांग्लादेशी टाका बात करेगा दादा, एक टाका रियाल के बदले 33.78, तो 33.78 बाड़ी ते पाड़ी देओ, बढ़िया मिल रहा रेट 89.6 मिर्ची 1 पर मस्मोला गौर बताया। आईपी के एक्सचेंज रेट मिर्ची इट्स ऑन।

0: अरे मुनु, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ बिलने पड़ते हैं यार।
1: ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक यार?
0: अरे कहावत है यार।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं।
2: oh, no.
0: फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: हाँ जी, हम भी आपके सखा हैं और हमारा नाम ही मस्त मौला गौरव। आसमानों में देखते रहिए, जैसे ही सैटर्न दिखाई दे मुझे भी बता दीजिए। फिलहाल 6:07
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और भाई, कतर की ना आदत हो गई है टॉपर बनने की, मतलब हर चीज में अव्वल नंबर, अव्वल क्वालिटी। एंड शायद यही वजह है कि दोहा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे UDSCMPR से कहते हैं, उन्हें इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है 6 academics प्रोग्राम में। #9741 और ये 6 प्रोग्राम जो अप्रूव किए गए हैं, ये एक तरह से जबरदस्त रिव्यू के बाद इनको ये एक्रेडिटेशन मिला है। 3 कमिटीज इसमें लगातार देख देख कर रही थी, एंड कुल मिलाकर बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इन सबको एक्रेडिटेशन मिला है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आने वाले टाइम में UDSC के स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में परचम लहरा पाए, उसके लिए ये एक्रेडिटेशन इंपॉर्टेंट था। और अब इनके आने के बाद UDST के इन कोर्सेज की वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो गई है। एंड आने वाले टाइम में यहाँ से जो ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, आई एम श्योर वो बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी जगहों पर जॉब पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू स्टूडेंट्स। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. Na vietva la burga. Milchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो विनीत जी।
1: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
1: सही हाँ, हाँ मैं तो चल रही हैं।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
1: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
1: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बच जाएगा।
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
1: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
1: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
1: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
1: मैं घोड़ी तो चढ़ जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
1: हेलो हेलो,
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
1: ये बारात का बजा रहा है, किसी के सरात का बजा रहा है ये?
2: मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
1: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया सर, आप बुरा मत मानिए।
1: अच्छा भैया
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
6: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cash back. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.

0: com.
1: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
2: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स, रेडी हो जाओ. डेयरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन.
1: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स. संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से.
2: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेयरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ. डेयरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड. तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में.
3: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है. अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक. देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट. और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट. है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
4: खट खट,
5: कौन है?
4: अज्जू.
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए. होए
5: खट खट, हु दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: हाँ जी, सोनी सोनी गाना खत्म। दर्शन रावल, जोनीता गांधी ने सुनाया और हमने आप तक पहुंचाया। लेकिन शूटिंग का गोल्ड जीतकर कतर एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए हुए है और इंडिया अभी 12वें नंबर पर स्ट्रगल किए हुए है।
1: क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, सबका अपडेट बताएगा रे तिरम मिर्ची।
2: स्पोर्ट्स अपडेट
0: में सबसे पहले बात करेंगे हम एशियन गेम्स की, जहां पर इंडियन टीम पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से टेबल पर थोड़ा और ऊपर बढ़ा जाए। यस, हम आपको बता दें, एशियन गेम्स में आज इंडिया को जहां 4 सिल्वर मेडल मिले हैं, वहीं 8वें दिन यानी कि आज के दिन 7 टोटल मेडल टैली में आए हम, और इस वजह से हम अब टॉप 10 की तरफ तो बढ़ रहे हैं लेकिन संघर्ष जारी है। यस, फिलहाल इंडिया 12वें रैंकिंग पर है 37 मेडल्स के साथ, जहां 4 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं अगर बात करें, चाइना इज लीडिंग द टेबल, इन्होंने शतक से शतक तक पूरा कर दिया है, 119 गोल्ड मेडल्स। जापान दूसरे नंबर पर, जापान को मिले 37 गोल्ड। साउथ कोरिया ऑन नंबर 3 विद 21 गोल्ड मेडल्स। उज्बेकिस्तान नंबर 4th पोजीशन पर, जहां इंडिया अक्सर रहता है, वहां पहुंचा हुआ है। इंडिया इस बार संघर्ष जरूर कर रहा है विद 37 टोटल मेडल्स, जो कि ऊपर जाने चाहिए एक बार जब एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड खुलेगा। इन सबके बीच कतर 17th नंबर पर 2 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज के साथ जबरदस्त पोजीशन बनाए हुए। पर मुझे पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से हमारी चाइना के बाद ही हम लोग एकदम नेक टू नेक है इंडिया जापान चाइना, ऐसे में हम मेडल्स कम पा रहे हैं पर उन्होंने जबरदस्त धमाल किया हुआ है। वहीं अगर बात की जाए, पाकिस्तान के हाथ लगे हैं 4 ब्रॉन्ज मेडल। वहीं श्रीलंका, जो कि उम्मीद कर रहा है शायद ट्रैक एंड फील्ड में आए, फिलहाल सिल्वर के साथ 1 मेडल जीत कर वो भी संघर्ष कर रहे हैं। वहीं बहरीन जबरदस्त तरीके से सीधे टॉप 10 में पहुंच चुका है। यह सब बता दें, बहरीन इस वक्त 9वीं पोजीशन पर है और ये विद 8 गोल्ड मेडल्स, 2 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज है। वेल, इन सब के बीच इंडियन टीम खेल रही है क्रिकेट मैच, नहीं एशियन गेम्स में नहीं, आज से हमारा वेस्ट इंडीज का टूर भी शुरू हो गया है। ऐसे में टीम इंडिया पूरी मेहनत कर रही है और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने तेजी से रन बनाया है। 296 का टारगेट है, 225/1 इस वक्त टीम इंडिया का स्कोर, ऑलमोस्ट गोइंग टू विन। मिर्ची, इट्स हॉट है जी।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
8: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
9: जबरदस्त ट्रैक्स।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

अगर आपको भी उचिया गाड़ियाँ रखने का शौक है लेकिन बजट है कम, तो हम दे रहे हैं एक सोल्यूशन। क्योंकि हमारे कतर में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक लेकर आए एक बड़ा पब्लिक ऑक्शन इम्पाउंडेड व्हीकल्स का। यस, ये इम्पाउंडेड व्हीकल्स जो किसी वजह से, लीगल वजह से गाड़ियों को जब्त किया जाता है, वो गाड़ियाँ अच्छी कंडीशन में होती है और आप अगर उनको खरीदना चाहते हैं तो मौका आपके पास है। एंड बड़ी बात यह कि आपको लगता है नहीं यार ये गाड़ी पता नहीं कैसी होगी, तो आप ऑक्शन से पहले इन कार्स को देख भी सकते हैं। सितंबर 30th से अक्टूबर 1st के बीच सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपको जाना पड़ेगा इंपाउंडेड व्हीकल्स के उस कंपाउंड में जो है इंपाउंड यार्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रीट 52 पर। याद रखिए, यहां जाकर आप पहले गाड़ी देख लीजिए और फिर 4th ऑफ अक्टूबर से जब ऑक्शन शुरू हो तो हर दिन शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको वहां पहुंच जाना है और ऑक्शन में अपनी तरफ से पूरी बोली लगानी है। लकी हुए तो गाड़ी मिल जाएगी कम पैसे में, आपकी बेहतरीन गाड़ी का सपना पूरा हो जाएगा। बट एक बात याद रखिए, इंसान ना दो चीजें हमेशा अच्छी चाहता है, एक अच्छा घर और एक अच्छी गाड़ी। मौका आ गया है, कम पैसे में अच्छी गाड़ी ले लो सर। एंड मस्ट मोलो गर्फ को थैंक यू कह दो जिसने ये बात याद दिला दी है। गाड़ी की ट्रीट तो हम आपसे लेके रहेंगे। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा। आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us how old were you when you made the song?
2: What I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था। सारे बादल नीचे आ चुके। And उस बीच में then I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है। देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
1: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा Black Sheep के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's out.
0: Bollywood Boldal, Bollywood Bollywood Bollywood Boldal, only on Mirchi, It's hot.
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बाद अब हम देने जा रहे हैं, यानी कि कदर देने जा रहा है एक और प्लेनेट। मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहेगा कि दुनिया को एक नया प्लेनेट दिखाएगा कतर दिसंबर में, क्योंकि कतर कैलेंडर लेकर आ रहे हैं बबल प्लेनेट एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस। अब ये बबल प्लेनेट है क्या, मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा ग्रैंड इवेंट है जो कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस साल के एंड 6 दिसंबर को आने वाला है। यस, एंड इसकी टिकट्स आपको अक्टूबर से ही मिलेंगी। इस दुनिया के अलग से प्लैनेट में क्या क्या होगा, यहाँ पे लोगों को मिलने वाली है मल्टी सेंसरी इवेंट एंड जाइंट बबल बाथ बॉल पिट, वर्चुअल रियलिटी रूम, अंडर सी एलईडी एनवायरनमेंट एंड 360 डिग्री प्रोजेक्शन, और इसके साथ ऑप्टिकल इल्यूजन की एक दुनिया जो आपको इस बबल प्लैनेट पे खोने नहीं देगी। बिल्कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ, 6 दिसंबर से ये हमारे कतर में शुरू हो जाएगा, तो इस विंटर सीजन फैमिली के साथ ये नया एक्सपीरियंस लेंगे हम बबल प्लैनेट में। लेकिन उसके लिए टिकट्स तो बुक करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए, अक्टूबर में हाथों में मोबाइल होना चाहिए और टिकट बुकिंग का बस लिंक, उसके बाद दे धकाधक अपने बुक कर लेनी टिकट, ताकि हम दुनिया के इस नए प्लैनेट पे चलें और बच्चों को अपने इस ढेर सारी मस्ती भरे पल का यादगार लम्हा दें। लेकिन याद रखिएगा, बबल से हमको अपने बचपन का वो खेल याद आता है जब घर में सर्फ आता था और उससे मिला मिला के हम लोग फूक फूक के बबल बनाने की कोशिश करते, तो इस चक्कर में मम्मी से कितना पीटते थे क्योंकि इतना सर्फ बर्बाद किया यार। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: बैंगल्स तो यहाँ हमारे सुख वाकिफ में एक भाई साहब भी बेचते हैं, और उनकी आवाज ऐसी होती है कि लोग पलट के देखते हैं, भाई साहब ऐसे आवाज लगाते हैं। फिलहाल दो मिर्ची घड़ी का टाइम, शाम के 7:05।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और इसे कहते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे पर आए उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात जो दुनिया पे अब छोड़ रहा है अपनी नई छाप। यस, बात करो मैं हमारे कतर की, जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे जबरदस्त छलांग मिली है। यस, दुनिया भर में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट अगर देखा जाए तो हमारे कतर में आया है। प्राइस कॉम्पिटेटिवनेस पिलर में पूरा 49% का जंप, मतलब होटल्स, ट्रेवल और एक्सपीरियंस अब पहले से कहीं ज्यादा बजट फ्रेंडली हो गए हमारे कतर में। और उसके अलावा ओवरऑल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भी कतर ने 2024 के मुकाबले 6% की ग्रोथ हासिल की है। तो मतलब चाहिए आप सुख वाकिफ की चाय पीने या कतारा का कल्चर देखने, इनलैंड सी की सफारी पे, कतर घूमने के लिए पूरी दुनिया के लिए अफोर्डेबल हो गया। और मैं तो कह रहा हूँ ये वो टाइम है कि हम लकी हैं यार, हम यहाँ रहते हैं, हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाएं और कतर की इस ग्रोथ का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि अब कतर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ये ऐलान कर दिया है कि जब बात ट्रेवल एंड टूरिज्म की आती है तो हम हबीबी सबका वेलकम करते हैं। वैसे मैं एक पंच लाइन बोलना चाहता हूँ कि ट्रेवल की दुनिया में अब हमने मचा दिया है गदर। हबीबी वेलकम एवरीवन टू कतर 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
2: फिर कोई
1: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है
5: अरे रिलैक्स लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है
4: हाफ पे बैक मतलब
5: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली
4: वाओ किस किस चीज पे
5: रेडीमेड गारमेंट्स साड़ीज चूड़ीदार फुटवेयर लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज
4: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी
5: बिल्कुल वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो तो देर किस बात की हेड टू लूलू हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा लूलू वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेज आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स
8: खटखट
9: पुरेर
8: बनता
9: बनता हूं
8: अरे बनता तो बहुत हूं मैं अपने आप को
9: खटखट हु दैट
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

महंगी गाड़ियों का शौक तो बहुतों का है, लेकिन गाड़ी पर महंगा नंबर प्लेट अभी भी हमारे खतर में शौक है। और इसलिए तो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने अनाउंस कर दिया है न्यू स्पेशल व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि सोम ऐप पर अवेलेबल हो रहा है। यस, अक्टूबर 1st थर्सडे के दिन सुबह 10 बजे से सोम ऐप पर आपको स्पेशल नंबर जो है वो एक्टिवेट मिलेंगे। आपको बस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बटन, एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट बटन को दबाना है एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे आप 72 आवर्स के अंदर। जैसे ये सबमिट हो जाएगा, आपके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको मौका मिल जाएगा अपने गाड़ी के लिए बिडिंग करने का। मान लीजिए अगर कोई ऐसा है जो उस नंबर में इंटरेस्ट रखता है तो जिसने हाई बिड किया वो जीत जाएगा, लेकिन आपके नंबर में अगर मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो नंबर आपको ऐसे अवार्ड कर दिया। कुल मिलाकर महंगी गाड़ियां तो बहुत लोग रखते हैं अभी भी, लेकिन जब बात महंगे नंबर प्लेट की आए, जैसे कि 999666 या 9997666 या मान लीजिए 999888, ऐसे नंबर्स अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो मौका आपके पास आ गया है। जरा पैसे अंटी से ढीले करो और गाड़ियों से भी महंगे नंबर प्लेट्स लेके घर जाओ, ताकि दुनिया को बता पाओ जब बात शौक की आती है तो महंगी गाड़ियों से ज्यादा उस गाड़ी पर लगे नंबर प्लेट महंगे होने चाहिए। एंड हमारे कतर में ऐसी बहुत सारी कार्स हैं जिन पे ना नंबर प्लेट कार की वैल्यू से भी 5 गुना ज्यादा है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

कह रहा ना कि सचिन पाजी का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो विराट कोहली, और वही हो रहा है। आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, एंड मैं आपको बता दूं कि सबसे तेज 15,000 वनडे क्रिकेट रन अब विराट कोहली ने बना दिए हैं। यस, विराट ने आज इतिहास रच दिया है, जहां 377 इनिंग्स के साथ सचिन तेंदुलकर ने 2007 में अपने रन्स पूरे किए थे 15,000, वहीं विराट कोहली ने जस्ट 303 इनिंग्स में ये कारनामा कर दिया है, और आज उन्होंने अपना 55th वनडे वाला शतक भी लगा दिया है। कुल मिलाकर वेस्टइंडीज भले इस मैच में हार गई, पर कोशिश भरपूर थी कि कुछ अच्छा कर ले, हो नहीं पाया। बैटिंग जरूर ठीक ठाक की, लेकिन बॉलिंग में एकदम से सब झंडू हो गए। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं, टीम इंडिया यहां तो जीत रही है, लेकिन एशियन गेम्स में हमें गोल्ड मेडल चाहिए, क्योंकि इस बार मेडल्स की संख्या बड़ी कम है। तो आधे खिलाड़ी उधर भी चले जाओ, थोड़ा उधर भी दिमाग लगाओ, कल से हमें वहां भी उतरने। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव, बस इतने कहना चाहेगा, कोहली ने ये कह दिया है 2027 उनका लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप है, एंड वो अपना पूरी जान दमखम लगा देंगे। सो हमें भी उन्हें चीयर अप करना है साथ में मिलकर, एंड आई एम श्योर जो नहीं हुआ वो करके दिखाएगा भाई। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: डेयरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
1: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
0: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेयरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेयरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
2: खटखट,
3: हू दैट?
2: अकबर।
3: अकबर हू?
2: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
3: खटखट, हू दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: कंगना कंगना
1: यार लाइफ में ना आप कितना भी आगे निकल जाओ, एक गेट जिसके आगे आकर आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है वो होता है आपके स्कूल का गेट। एंड लेट मी टेल यू, मैं जब अपने स्कूल के गेट से कभी भी पास ऑन करता हूँ और मुझे वहाँ बच्चे दिखाई देते हैं तो मैं उनमें अपने दोस्तों को ढूंढने लगता हूँ कि यार हम भी अपने स्कूल डेज में ऐसे ही होते थे। फिलहाल स्कूल में ना कुछ नहीं बदला, हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल गया, लेकिन आज भी स्कूल में जब उन टीचर्स को देखो तो वो उसी मुस्कुराहट के साथ बच्चों के साथ बाहर निकल रहे होते हैं। एंड बच्चों के चेहरे पर कभी कभी टेंशन भी होती है जब वो पढ़ाई के प्रेशर को ले रहे होते हैं। एंड ऐसे में मैं इतना ही कहूँगा, मिर्ची लेकर आया है GWM मिर्ची रिचार्ज, जहाँ पर वेकेशन के बाद जब बैक टू स्कूल पहुंचे तो बहुत सारा फन मस्ती धमाल नहीं किया बल्कि सीरियस होकर पढ़ाई की और अपना मिड टर्म एग्जाम खत्म कर लिया। एंड अब मिर्ची एक बार फिर से उन्हें रिचार्ज करने जा रहा है। GWM मिर्ची रिचार्ज कल होगा DMS स्कूल में, जहां पर वहां के बच्चों के साथ करेंगे हम ढेर सारी फन मस्ती धमाल। एंड अगर आप चाहते हैं बच्चों हम आपके स्कूल आए, 5000196 पर अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर सेंड करो। एंड अगर आपके स्कूल मैनेजमेंट से हो गई बात तो फिर हम वो धमाल आपके स्कूल में भी आके करेंगे। GWM मिर्ची रिचार्ज कल पहली बार होने जा रहा है DMI स्कूल में, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बहुत सारा फन मस्ती धमाल करेंगे और अपने स्कूल डेज को आपके स्कूल में आकर जिएंगे। 89.6 मिर्ची बन के सारे आरजे, बाय मिर्ची, इट्स हॉट।

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: Mir Ishwar.
1: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. खट खट,
2: कौन है?
1: ईशांत.
2: ईशांत कौन?
1: ईशांत गदाधारी भीम ईशांत.
2: खट खट, हु दैट?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
2: गाना इंडी टॉप 10
4: कनिका के साथ On Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika and it's time for the hottest pop music of the week. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, kisi countdown ki ranking ke bare mein koi sawal, bindaas aake hit me up. Hafte ke top 10 gaano ke countdown mein ek nayi entry hai. Show par hum apna 90s and 2000 ka indie pop classic bajane wale hain. Some special shout outs, all that and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ke countdown ki with gaana number 10. Sanju Rathod ki awaaz की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे गाना. 16 हफ्ते हो गए इसको काउंटडाउन पर. बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद रोमांटिक बैलेड ऑफ द सीजन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज जी की आवाज में. राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, दिस वन हैज टेकन इंटरनेट बाय स्टॉर्म. गाने का नाम है दरमिया. मुसाफिर कैफे शो से है ये गाना एंड अपेरेंटली इट्स अ लव सॉन्ग ऑफ द सीजन. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.
3: नंबर 10.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sakka bana. Kya bana? Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
4: Hello,
5: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
4: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
5: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
4: हाँ जी.
5: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
4: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
5: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी? जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
4: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
5: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
4: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
5: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका इस टाइप
4: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
5: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
4: है. सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
5: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
4: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
5: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
4: हाँ बताइए
5: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
4: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
5: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
4: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ. डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन.
7: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स. संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से.
6: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ. डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड. तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में.
8: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है.
9: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है?
8: हाफ पे बैक मतलब?
9: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली.
8: वाओ, किस किस चीज पे?
9: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज.
8: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी.
9: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो. तो देर किस बात की, हेड टू लूलू. हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा. लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
10: Our business is our business, none of your business.
11: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
0: Qatar का number one radio station.
12: 89.6
13: FM, Mirchi 1. It's hot.
14: Ghana Indie Top 10.
0: Ghana Indie Top 10.
15: Kanika ke saath on Mirchi.
16: Number 7. How chup?

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साड़ी सुन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उससे पहले एक नई नवेली एंट्री, KDS 54 एंड रॉन का गाना फीचरिंग श्रेया घोषाल, गाने का नाम है कल्याणी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 8।
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इन टॉप 10 गानों के बाहर इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया इतनी डाइवर्स, इतनी वास्ट है, ऐसे इतने आर्टिस्ट, इतने गाने हैं जो शायद अभी तक आप तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जिस दिन आप इस गाने को सुन लेंगे, यू विल बी लाइक, ये कहां था अभी तक। फरक का तारे ऐसे एक गाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तारे उन गानों में से है जो धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर किया, इतना पसंद आया दैट हमारे काउंटडाउन में टॉप 10 पर है। बट आई ट्रूली बिलीव दैट वी लिव इन अ टाइम जहां हम जो भी ढूंढना चाहें हमको सब मिल जाता है। इंटरनेट, AI, तो आपको इसके आगे और क्या सर्च करना चाहिए, 10 मोर थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट, सब कुछ बता देता है। तो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में हमारी क्यूरियोसिटी इज अ बिगेस्ट करेंसी। क्यूरियोसिटी टेक्स अस टू प्लेसेस, एंड अगर यू आर वन ऑफ दोस क्यूरियस पीपल जिनको नए आर्टिस्ट, नए गाने डिस्कवर करने हैं, वो गाने जो अभी तक आपके एल्गोरिदम के थ्रू आप तक नहीं पहुंचे, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट गाना डिस्कवर। ऑल द न्यू प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एक साथ क्यूरेटेड फॉर यू, हिंदी के साथ साथ पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, एंड 10/10 गारंटी लेके कह सकती हूँ, व्हेन यू लिसन टू दोस सॉन्ग्स यू विल बी लाइक, यार ये गाने अभी तक मुझे किसी ने क्यों नहीं सुनाए। सो फॉर ऑल यू क्यूरियस बेस्टीज, गाना डिस्कवर इज अ प्लेस फॉर यू। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो भी उस प्लेलिस्ट में है। गाने का नाम है तारे, रिटन एंड कंपोज्ड बाय फरक, फरक का ही म्यूजिक। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, तारे इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद कृष्णा धंधन्योलीवाला का गाना बूम शाका, पिछले हफ्ते से एक नई, दो नई, तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बूम शाका इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दोनों गाने बैक टू बैक, फरक का तारे ऑन नंबर 6, बूम शाका ऑन नंबर 5, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बद्दी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: बंजारा दी आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन। 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार आ रहा है। आई एम स्टिल नॉट बोर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, हरियाणवी पॉप सॉन्ग। आई एम सैट दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @rjkanika। सितंबर जा रहा है, अक्टूबर आ रहा है, एंड आई एम श्योर आपने तो नोटिस कर ही लिया दैट मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने का सबसे पहला सिग्नल ना हमको शाम दे देती है। दिन तो वैसे ही निकलता है, मे बी आप कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, सेम ट्रैफिक, सेम काम, सेम फोन कॉल्स, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना हवा बदलने लगती है, रोशनी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, नई आवाजें, नई तरह की आवाजें, मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। एक तरफ हम पूरा दिन रैप कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ यू आर रियली excited to start our day. And somehow, यार मुझे पता नहीं क्यों ये शाम का वक्त बड़ा emotional लगता है। Ever since I was a little kid, शाम को खेलने के बाद घर वापस जाना, मतलब sad वाला emotional नहीं, just I am really aware of how I feel in the evenings. So obviously, full feelings वाली playlist भी है मेरे पास for these evenings. And I'm going to play my top pick for you today. गाने का नाम है शाम तन्हा by अग्नि।
2: शाम तन्हा,
0: कुछ तो है इस गाने में दैट हर साल ये गाना मुझे और अच्छा लगने लगता है। मोहन कनन ने जिस तरह से इस गाने को गाया है ब्रो, इट्स लाइक कोई रश नहीं है, ही इज नॉट पुशिंग यू टू फील समथिंग बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील थिंग्स। @rjkanika ऑन इंस्टाग्राम पर प्लीज आके मुझे बताना कि व्हाट डिड दिस सॉन्ग मेक यू फील। मैं तो इतना कुछ शेयर कर देती हूँ, इतनी वल्नरेबल हो जाती हूँ यहाँ पे, बट कुछ खास है इस गाने में। इट विल टेक यू बैक टू समथिंग, सम मेमोरी और एन इवनिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इट्स फॉर ऑल दोस इवनिंग जहाँ पर आपको लगा कि कुछ खास हुआ भी नहीं है, बट स्टिल यू फाइंड दैट स्टिलनेस एंड आप उसे कितनी बार भी जी सकते हो। अग्नि द बैंड का गाना, मोहन कनन एंड अरिजीत की आवाज में। दिस इज शाम तन्हा प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
4: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
3: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल। बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल डाल।
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
6: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
5: खटखट, हु दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट। गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
3: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram pe jao, mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani hai, bindaas aake hit me up. I truly, really believe that gaane share karne se pyar badhta hai. Tabhi toh, it's time for what we call
0: Kanika's Kasar Classic.
3: हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
7: डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी।
3: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
7: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी।
3: गाने का नाम है तेरा मेरा प्यार, बाय द वन एंड ओनली कुमार सानू। ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स अबाउट लव एट फर्स्ट साइट। इसकी मेलोडी में, राइट देयर इन द कॉम्पोजिशन, वो अर्ली 2000s वाली रोमांटिक एनर्जी है, विच इज वेरी इनोसेंट, थोड़ी फिल्मी बट बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड। आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू वन ऑफ आवर लिसनर्स आरुष, जो पुणे से हैं। उन्होंने इतनी बार रिक्वेस्ट किया ये गाना। आरुष, दिस वन इज फॉर यू। अकॉर्डिंग टू आरुष, ही इज लुकिंग फॉर लव एंड थोड़ी मुश्किल आ रही है। वो कहते हैं कि यार डेट पे जाने के लिए, बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं, बट वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग नहीं आ रही है। सो ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग एंड गो बैक टू दोज सिंपलर टाइम्स, जब लाइफ सिंपल थी और किसी को पसंद करना एक बहुत बड़ी डील होती थी। किसी के फोन के लिए वो पूरा दिन वेट करते थे, उनका नाम स्क्रीन पे देखकर बिना रीजन स्माइल करते थे, फिर रात को सोने से पहले वो सारी कॉन्वर्सेशंस अपने दिमाग में रिप्ले करते थे। आरुष ने मुझे वो नाम बताया, मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट आई ट्रूली फील यू आरुष। दिस सॉन्ग इज लाइक अ टिकट टू सिंपलर टाइम्स, जहाँ बस कॉलेज कैंपस से बस स्टॉप तक जाना, साथ में चलना ही डेट लगती थी। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। रियल लाइफ में आई माइट नॉट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, बट इस गाने में इट वर्क्स आउट। कुमार सानू की आवाज में दिस इज तेरा मेरा प्यार ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

एंड पहला प्यार पहली नजर वाला कुमार सानू की आवाज, ये इतना इमेजिनेटिव है. आई थिंक फर्स्ट लव का जो मेगा मैजिक है वो इसी में है, दैट उस वक्त किसी को पता ही नहीं है दैट ये मेमोरी आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी मेमोरी बन जाएगी. कुमार सानू की आवाज में दैट वाज तेरा मेरा प्यार ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर. आओ 90s एंड 2000s के वो गाने जो आपको आज आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से सिंपल टाइम्स में ले जाते हैं हमारे साथ आके शेयर करो. मैं और अश्काय माई प्रोड्यूसर, हम दोनों आपके रिकमेंडेशंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं. नाउ बैक द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. बादशाह हितेन शर्वी यादव का गाना, गाने का नाम है बैंगर. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक बैंगर इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद मिट्टा रोर का शीशा, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले 4 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है, दिस वीक ऑल्सो ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगर ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय. नंबर 2.

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
2: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

फ्राइडे नाइट यानी बड़ी सारी हिंदी मूवीज रिलीज होती हैं आज। कई बार तो ऐसा होता है बेबी कि मूवी हॉल्स में ना फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही, लेकिन ओटीटी पे थर्सडे नाइट या फ्राइडे नाइट को रिलीज होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब एवरी फ्राइडे बड़े हॉल्स पे कोई ना कोई बड़े स्टार की फिल्में रिलीज होती थी। फ्राइडे के लिए हमेशा हमारे जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ना काफी नर्वस रहते थे कि उनकी फिल्में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ऐसे में ना बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ना कुछ सुपरस्टिशंस फॉलो करते थे, नॉट जस्ट फॉर फ्राइडेज बट ऐसे भी अपनी लाइफ में। अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे स्टार के बारे में जिन्होंने नॉनवेज और लिकर दोनों को छोड़ दिया था बिफोर द रिलीज ऑफ हिज बिग बजट फिल्म। कौन थे वो फिनोमिनल डायरेक्टर एंड एक्टर, अभी बताएगी आपको श्रेया। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो
3: हाय ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो
3: हाय ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवीद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधरा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
7: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
6: हाफ पे बैक मतलब?
7: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
6: वाओ, किस किस चीज पे?
7: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
6: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
7: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
8: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
9: खटखट, who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मेरा नाम जोकर ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी राज कपूर साहब को। ये उनके दिल के सबसे करीब फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पे दर्शकों के करीब नहीं पहुंच पाई। दिस वॉज अ सुपर फ्लॉप फिल्म और इस फिल्म में बहुत सारा पैसा लगा था राज कपूर साहब का। इनफैक्ट वो एकदम बैंकक्रप्ट हो गए थे जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी। उसके बाद उन्होंने जिस फिल्म के लिए अगला काम शुरू किया ना, उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया था उस फिल्म के रिलीज तक। वो क्या सैक्रिफाइस था, कौन सी फिल्म थी, आई विल लेट यू नो कुछ गानों के उस पार। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 네.
1: 칼칼 호다.
2: Only on 89.6 Mirchi One. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मूवी का नाम बॉबी, और ये एक ऐसी फिल्म होने वाली थी जिससे शायद राज कपूर साहब अपनी सारी बैंकरप्सी को रिकवर कर पाते, अपने डेट्स को रीपे कर पाते। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ ऑफ आर हिंदी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लेजेंडरी स्टार्स। सो जब राज कपूर साहब की बहुत सारा पैसा लगने के बाद, इनफैक्ट उनका सारा पैसा लगने के बाद मेरा नाम जोकर सुपर डुपर फ्लॉप हो गई ना, तो उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिर से कर्जा लिया था बहुत सारे नोन और अननोन रिसोर्सेस से। उनकी ये इकलौती उम्मीद थी अगर उनकी ये फिल्म चल गई तो वो अपने सारे कर्जे को वापस रीपे कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने पता है एक सैक्रिफाइस किया था, एक नहीं बल्कि दो सैक्रिफाइसेस किए थे। उन्होंने नॉनवेज को और लिकर को, ड्रिंक्स को तब तक हाथ नहीं लगाया था जब तक बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन की रिलीज पे ही बॉबी को सुपर हिट नहीं कह दिया गया, एंड आफ्टर दैट ही पार्टीड। तो इसी बात पे बॉबी का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
4: I like that song.

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें और आज उस जमाने के सुपरस्टिशंस भी चल रहे हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड मैं कुछ बॉलीवुड स्टार्स के ना सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, कुछ टोटकों की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसपे वो बिलीव करते हैं। अब अगर हम द सुपर स्टार बच्चन साहब को लें तो ये सबको पता चल गया है ना अब तो कि अमिताभ बच्चन इंडिया का कोई भी क्रिकेट मैच लाइव नहीं देखते। उनको ये लगता है कि जब जब वो लाइव देखते हैं ना इंडिया हार जाती है, और अगर कहीं बैटिंग कर रही होती है तो बहुत जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं ना वो सबको रिकॉर्डिंग मोड पे लगा करके छोड़ देते हैं एंड आफ्टर द मैच ही वॉचेस देम। लेकिन ये वाला सुपरस्टिशन उनका सबको पता है, एक जो सिर्फ मुझे पता है मैं अभी आपको बताऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
2: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

0: पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया बैक टू बैक चल रही है। आज मैं सुपरस्टिशंस ऑफ हमारे लेजेंडरी बॉलीवुड स्टार्स की बात कर रही हूँ। बच्चन साहब का क्रिकेट को लेकर के क्या सुपरस्टिशन है ये तो सबको पता है कि वो कोई भी इंडिया का मैच जो है ना क्रिकेट का, वो लाइव नहीं देखते, वो हमेशा रिकॉर्डिंग मोड पे डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं, बिकॉज ही फील्स कि अगर वो लाइव विटनेस करेंगे तो इंडिया हार जाती है। एनीवे, दूसरा सुपरस्टिशन जो उन्होंने बातों ही बातों में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पंक्चुअल बहुत है अपनी मूवी की शूटिंग को लेकर के, किसी भी सेट पे पहुंचने को लेकर के। ही सेड कि मैं इतना ज्यादा पंक्चुअल हूँ कि अगर मैं कभी लेट हो जाता हूँ, खुदा ना खास्ता, जो वो कभी नहीं होते हैं, तो उनके दिल में एक खटास सी हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस सेट पे लेट क्यों पहुंचा। क्या आज का दिन उनके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा? इमेजिन, उनका ना समय पे कंट्रोल है जो किसी का नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई ही इज दी बच्चन। इसी बात पे बच्चन साहब का एक गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: गली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन?
2: नो।
1: गोल्डी? सोल्डी?
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ
2: हाँ मैं
3: तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से, जो आदमी भेजने हैं बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाला एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहा है ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएगा?
3: हेलो हेलो,
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
2: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप मुर्गा बन मानिए काम।
3: अच्छा भैया आप मेरे
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: खट खट,
7: हू दैट?
6: जस्सी।
7: जस्सी कौन सी वाली जस्सी?
6: जस्सी हू हैज कम आंटी जी।
7: खट खट, हू दैट?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जीतू जी आज भी प्लेन में चढ़ने से डरते हैं और इसीलिए वो थोड़ी पूजा पाठ करके ही किसी भी प्लेन को बोर्ड करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ द जंपिंग जैक उनको कहा जाता था बिकॉज ही डांस सो वेल। सो जितेंद्र जी का ये सुपरस्टिशन है कि कोई भी फ्लाइट वो बोर्ड कर ले उनको थोड़ी सी पूजा करनी होती है एंड ही सेज कि उनको फ्लाइट फोबिया है क्योंकि इनिशियल डेज में उन्होंने जब जब फ्लाइट ली तो उसमें टर्बुलेंस रहा, फ्लाइट थोड़ा डगमगाई, ऑल ऑफ इट, उससे उनके दिल में डर घर कर गया और इसीलिए वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले ऊपर वाले को बहुत अच्छे से याद करते हैं और उन्हें बटर लगाते हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, जीतू जी की बात हुई है, उनका गाना ना हो ये गुस्सा कि मैं कैसे कर सकती हूँ। सो कमिंग योर वे इज अ सॉन्ग और उसके बाद मैं यहीं बैठी हूँ, मिलते हैं कुछ गानों के उस पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट।
6: कौन है?
5: स्टेन।
6: स्टेन कौन?
5: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
7: खट खट। Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सुभाष घई की फिल्म थी ये राम लखन, और सुभाष घई का सुपरस्टिशन शेयर करूं मैं पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ। सुभाष घई का ये सुपरस्टिशन तो हम उनकी हर फिल्म में देखते, इनफैक्ट जो फिल्में उन्होंने 2000s में बनाई उसमें भी देख चुके हैं, फिर चाहे वो परदेस हो या फिर तालो। तो सुभाष घई को हमेशा लगता है कि वो जब भी कोई फिल्म बनाते हैं उसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है, और जिस भी फिल्म में वो खुद आते हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। मुझे याद है कि इस फिल्म राम लखन में भी उनका एक स्पेशल अपीयरेंस होता है छोटा सा, यादें में इनका स्पेशल अपीयरेंस होता है, ताल में, परदेस में, इन सब में आप सुभाष घई को देख सकते हो। वैसे आज कुछ ऐसे ही टोटकों की बात हो रही है, कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशंस की बात हो रही है जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स मानते हैं। कम राइट बैक, विल शेयर मोर विद यू। मैं हूँ श्रेया, यू कैन कैच मी ऑन फेसबुक और इंस्टा, हैंडल है मेरा RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA श्रेया विद लव।

कथित था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: द लेट इरफान खान से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है, इज इट दिल्ली, इज इट मुंबई?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

नासिर हुसैन साहब ने अपने फेवरेटिज्म को छिपाने के लिए बात कही हो या फिर अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को विद आशा पारेख, लेकिन वो हर बार ये कहते थे कि आशा पारेख उनके लिए बहुत ही लकी हैं एंड दैट इज वाई वो उनको अपनी फिल्मों में रिपीट करते थे। पुरानी जीन्स पे आफर श्रेया के साथ आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ हमारे बॉलीवुड स्टार्स की। सो कैमरे के पीछे डायरेक्टर नासिर हुसैन, कैमरे के उस पार आशा पारेख, और इस जोड़ी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी जिनमें से तीन तो थी जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल एंड ऑफकोर्स मोर ऑफ देम। लोग तो ये भी कहते हैं कि नासिर हुसैन और आशा पारेख के बीच में ना लव एंगल था। आशा पारेख ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी डायरेक्टर साहब से बात हुई उन्होंने इसको सुपरस्टिशन का एंगल दिया, आशा पारेख को अपनी फिल्मों के लिए लकी माना। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, तो इसी बात पे तीसरी मंजिल का गाना हो जाए, डायरेक्टेड बाय नासिर हुसैन एंड हीरोइन बीइंग ऑफकोर्स आशा पारेख। अप नेक्स्ट फॉर यू।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं, फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

इनकी फिल्मों में ज्यादा काम तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ इनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि काका हमेशा इन्हीं का नाम रेकमेंड करते थे, और इसीलिए 9 फिल्में इन्होंने एक साथ करी विच वॉज सुपर डुपर हिट। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, आज ना मैं सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, हमारे बॉलीवुड स्टार्स के कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस जो उन्होंने एकदम शिद्दत से फॉलो किए। अगर काका की बात लें यानी राजेश खन्ना जी की बात लेना, तो उनके लिए मुमताज जी बहुत लकी थी, ऐसा राजेश खन्ना ने इंटरव्यूज में भी कहा, क्योंकि उनकी जोड़ी को बहुत एक्सेप्टेंस मिली, उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत लाइक किया। एंड मुमताज जी उनके साथ काम करने से पहले ना बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थी, लेकिन काका और उनकी जोड़ी ए ग्रेड थी। तो राजेश खन्ना मुमताज को अपनी हर फिल्म के लिए बहुत लकी मानते थे, और इसीलिए डायरेक्टर्स को उन्हीं का नाम सजेस्ट करते थे। आपकी कसम हो, दो रास्ते हो, अपना देश हो, प्रेम कहानी हो, सो मेनी ऑफ देम, पूरी 9 हिट फिल्में। तो इन्हीं दोनों की केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्वीट सेंशस गाना मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें थोड़ा नटखट हो रही है मुमताज जी एज ऑलवेज, उन्हें प्यार से बाय द वे काका मोटी कहा करते थे, और राजेश खन्ना ऐसे दिखा रहे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनकी हीरोइन की बिंदिया चमकेगी या चूड़ी खनकेगी। पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हाँ जी बोलिए।
4: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
3: आप बोलिए ना।
4: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
3: कॉल मैंने किया है। हेलो।
4: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
4: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
4: नींद में है क्या?
3: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैं देख रहा हूँ नंबर
4: क्या, बेल मेरे यहाँ
3: बजी है। आ जाते हैं उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तरह। हेलो। हाँ बताइए।
4: तेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
4: हेलो।
3: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
4: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
3: तो आप गाड़ी चलाइए। नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे। बदतमीजी से बात मत करिए आप, समझ गया। मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। हटा, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ। मैं
4: चप्पल
3: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, फोन
4: आराम कर दिया तुम
3: जीना यहाँ से। इस बार अगर कर दिया ना, बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा। चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में।
4: फोन आ रहा है, मेरी बात आएगा, फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

इस फिल्म में लीड हीरो तो ऋषि कपूर थे और उनके साथ सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर रहे थे राकेश रोशन। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। राकेश रोशन साहब का सुपरस्टिशन तो हम सबको पता है, जब उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की तो सब फिल्में के से शुरू होनी थी, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई एज अ फिल्म मेकर 1987 की खुदगर्ज वो सुपरहिट फिल्म बनी। फिर उसके बाद उन्होंने बनाई के से ही खून भरी मांग, फिर उनको के का ना एकदम चस्का चढ़ गया। ही बिकेम लाइक अब भाई मेरी जितनी फिल्में क से शुरू होंगी। फिर उन्होंने बनाई किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया के सीक्वल, क्रिश बनाई क्रिश के सीक्वल, ऑल ऑफ दैट। अब अगर कुछ करने से आपका आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सुपरस्टिशन तो आ ही जाता है ना उस चीज को लेकर के। राकेश रोशन साहब के साथ भी यही हुआ, किरण नहीं कई। पुरानी जीन्स में आपको श्रेया के साथ, जो आज कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हो फॉर बॉलीवुड स्टार्स। अगले कौन होंगे बताऊंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कट कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट, हु दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने ना लता जी को इस बात के लिए बहुत ब्लेम किया क्योंकि वो लता जी को अपनी फिल्मों के लिए लकी मानते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशंस ऑफ आवर बॉलीवुड स्टार्स टुडे। एंड राज कपूर जो थे ना, उनकी हर फिल्म में लता जी का गाना होता था। इनफैक्ट सिर्फ लता जी ही गाती थी अगर फीमेल गाना है तो। लेकिन एक फिल्म जिससे ये प्रथा को रोका गया वॉज मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में लता जी की आवाज नहीं थी और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एकदम धड़ाम गिरी, फ्लॉप हुई, तो राज कपूर ने एक्चुअली में लता जी को भी ब्लेम किया कि दीदी तुमने इस फिल्म में गाना नहीं गाया था मेरे लिए, इसीलिए ये अनलकी रही। पुरानी जीन्स पे राज कपूर साहब की फिल्म जिसके लिए लता जी ने गाना गाया, वैसे तो बहुत सारे पर ये वाला मैं स्पेशली लेकर के आई हूँ। सुनिए और वापस आइए श्रेया के साथ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made this song?
4: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall se paani gir raha tha. Sare badal niche aa chuke. And us beech mein then I saw the little train coming out. Dekho barish ho rahi hai. Dekho na dekho, it's raining, it's raining, it's raining.
3: अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: 89.6, 89.6, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। आई मीन पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

Chantal.

मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी, वो ख्वाब है या हकीकत है।